एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 38 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने

0: के विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जीवन में सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा, मोहम्मद रफी और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: आधुनिक युग में अध्यात्म के प्रखर साधक और चिंतक आचार्य विनोबा भावे से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, आध्यात्म क्या है और उसमें प्रवेश किस तरह किया जाए। आचार्य विनोबा भावे ने अपनी सरल रीति से समझाया कि आध्यात्म उसे कहते हैं जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड अपने में पहचाना जा सके, ब्रह्मांड का स्वरूप और उसके कर्ता का पता लगाना संभव नहीं, कारण वह अत्यंत व्यापक और सूक्ष्म है, फिर भी उसे पहचानने का यत्न किया जा सकता है। इतना तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, आज के विज्ञान की पहुंच से भी परे है। तब बाहर से ब्रह्मांड और उसके कर्ता के संबंध में अधिक ज्ञान नहीं पा सकेंगे, परंतु जो कुछ सृष्टि में है वही पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। इसीलिए ब्रह्मांड के कर्ता को समझने का सरल उपाय है उसे पिंड में जानना, यही आध्यात्म है। पिंड में देखने का अर्थ है उसे अपने अंदर देखना, सृष्टि में देखना, और सृष्टि में देखने का अर्थ है उसे बाहर देखना। प्रश्न है कि सारा ब्रह्मांड पिंड में है तो पिंड है क्या, पिंड और आत्मा में क्या भेद है। समझने की मुख्य बात यह है कि हम देह से भिन्न हैं। हम देखते हैं कि देह बदलती रहती है, कभी बीमारी हो।

0: होती है तो कभी अच्छी तरह देह स्वस्थ रहती है। बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं। चरखा बिगड़ गया तो स्वयं बड़े के पास जाकर अपने को दुरुस्त नहीं करवाता। हम आप चेतन प्राणी ही डॉक्टर के पास जाते हैं। देह से पृथक उसकी चिंता करने वाली कोई चेतना वस्तु न होती तो देह भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी। अतः स्पष्ट है कि हम में देह से भिन्न कोई चेतना कोई चेतन अवश्य है। इसी तरह हम मन भी नहीं हैं। देह मन और बुद्धि से अपना अलगपन अनुभव करेंगे तभी हम उन्हें सुधार सकेंगे। इसके लिए निरीक्षण, दूसरों की सहायता, सत्संग, भक्ति आदि के मार्ग हैं। ये पूछने पर कि आत्मचिंतन किस प्रकार किया जाए, आचार्य श्री ने कहा, विकारों से मुक्त होना पहला कदम है, उसके बाद आत्मचिंतन होना और उसके बाद विचार मुक्ति। विचार शून्य बनना भी एक प्रक्रिया है, ये अपने आप में स्थिति का होना है। मनुष्य में गुण दोष दोनों रहते हैं। निर्विकारिता, धैर्य, सत्य, प्रेम, ये सब आत्मा के गुण हैं। तो दोषों को अलग रख कर अपने में कौन सा गुण साधक है ये देखें। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने अलग अलग गुण बांटे हैं। महापुरुषों में भी विशिष्ट गुणों का उत्कर्ष होता है। जैसे भगवान कृष्ण में प्रेम का गुण दिखता है तो रामचंद्र जी में सत्य का, गांधी जी के जीवन में भी सत्य है। हम इनसे गुण लेकर अपने को श्रेष्ठ गुणों से विभूषित कर सकते हैं। हरि सर्वत्र है इस बात का अभ्यास करें। इसके लिए चित्त से मुक्त होना होगा। चित्त से मुक्त होने के लिए प्रार्थना का बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक मार्ग सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्म के बिना मानव की मुक्ति संभव नहीं है। अपने विकारों से मुक्ति, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मुक्ति ही नित्य आनंद स्वरूप में अवस्थित है।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विचार। विषय था आध्यात्मिक मार्ग। आलेख डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी का था और वाचन स्वर था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर था भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह का। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ दिन बाद यानी 6:50 पर हमारे श्रोता जानकारी प्राप्त करेंगे कार्यक्रम तिथि की बातें में। आज का विषय रहेगा नीम का कृषि एवं पौध संरक्षण में प्रयोग। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

7 बजे का समय रहेगा आपका कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम, पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत, और 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से। आप 7:31 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी का। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे नौटंकी गोस्वामी।

8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि के कुछ नगमे चित्रपट संगीत में। 9:00 आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम में फैट वार्ता, मलेरिया रोकथाम के उपाय और जानकारी देंगे डॉक्टर जी के सिंह, आपसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा। 9:30 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। नमस्कार 45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में वृंदावन पांड्या के गाए कुछ भजन। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10:30 पर आप पुनः आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 11:10 पर आप सुनेंगे फार्मेसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। 12:30 पर आप सुनेंगे ब्रिज लोकगीत कार्यक्रम में ढोला गायन, कलाकार होंगे विशन सिंह गुर्जर और साथी। 1:15 पर आप सुनेंगे वनता लोक कार्यक्रम, चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस और साथ ही चर्चा करेंगे स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। साथ ही इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम सावन आया रे, प्रस्तुति अनुपमा श्रीवास्तव की होगी। 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: आज हम नीम का कृषि एवं पौध संरक्षण में उपयोग विषय पर चर्चा करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों को भी अब इस बात का एहसास होने लगा है कि रासायनिक कीटनाशक जरूरी नहीं है, क्योंकि भूमि विषैली हो चुकी है, भूजल प्रदूषित हो चुका है, पर्यावरण दूषित हो चुका है, लाखों लोगों का स्वास्थ्य खतरे में डाल दिया गया है तथा हजारों खेतों व कृषि मजदूरों के प्राण। हरित क्रांति, जिसमें रसायनों के प्रयोग पर बहुत अधिक जोर दिया गया, रसायनों के उपयोग ने समस्याओं को खत्म करने की जगह पर ज्यादा बढ़ा दिया है। कीटनाशकों ने कीट की कई प्रजातियों में परिवर्तन लाकर उन्हें जटिल तथा अधिक खतरनाक बना दिया है। जैविक कृषि क्षेत्र में नीम का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। घरेलू कृषि रसायनों और पोषक तत्वों के रूप में नीम का प्रयोग होता आ रहा है, क्योंकि इसमें हानिकारक और जैविक रूप से अपघटित होने वाले तत्व मौजूद हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान से यह भी ज्ञात हुआ है कि नीम का सत कीड़ों की लगभग 400 प्रजातियों के लिए हानिकारक प्रभाव रखता है। रसायनों के प्रयोग से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में कृत्रिम रसायनों के प्रति प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाती है। इस दशा में नीम का प्रयोग प्रभावी जैविक रसायन के रूप में उपयोगी होता जा रहा है। नीम भारत का प्राचीनतम औषधीय वृक्ष है। सदियों से भारतीय किसान अपनी फसल और अनाज की सुरक्षा नीम की पत्ती और बीजों से करते आ रहे हैं। अभी भी ग्रामीण महिलाएं अनाज और ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा नीम की पत्तियों को सुखाकर उनकी एक परत नीचे बिछाकर करती हैं। नीम की पत्तियों, छाल एवं निवोली में जटिल यौगिक पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं, जो कि हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने में प्रभावी व सक्षम है। नीम कीट के जीवन पर अनेक तरह से प्रभाव डालता है। वह हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है, हानिकारक कीटों को फसल को खाने से रोक देता है, हानिकारक कीटों के अंडों को नष्ट करता है, फसल पर अंडे देने से रोकता है, हानिकारक कीटों की वृद्धि को प्रभावित करता है तथा हानिकारक कीटों के वयस्कों में प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। नीम के अनेक व्यावसायिक उत्पाद

0: बाजार में उपलब्ध हैं। इनका प्रयोग करते समय यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इसमें नीम का सत्व कितने प्रतिशत है, उसी पर इसका प्रभाव निर्भर करता है। अब बात आती है इसके प्रयोग करने की विधि पर। नीम की निमोली का सत्व बनाने के लिए 6 महीने से ज्यादा पुराने बीजों को नहीं लेना चाहिए। बीजों को तोड़कर 500 ग्राम निमोली निकाल लेना चाहिए। इसके बाद इसको अच्छी तरह से कूटकर कपड़े की पोटली बांधकर 5 लीटर पानी में डुबो देना चाहिए। रात भर रहने के बाद इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर निचोड़ लेना चाहिए। इसके बाद इस पानी को 100 लीटर पानी में मिलाकर उसमें 1% सस्ता साबुन थोड़ी मात्रा में मिलाकर फसलों तथा सब्जियों में लगने वाले रोगों और कीटों पर छिड़काव के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोली के अतिरिक्त नीम की पत्ती को भी कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम की पत्ती से सत बनाने के लिए 5 लीटर पानी में 1 किलो नीम की पत्तियों को डालकर पूरी रात छोड़ दें। फिर सुबह पत्ती को पीसकर पानी में मिलाकर छान लें। इसमें 80 किलोग्राम पत्तियां 1 हेक्टेयर खेत के लिए आवश्यक होती हैं। इसी प्रकार खली का इस्तेमाल भी कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नीम की खली से सत बनाने के लिए 100 ग्राम खली 1 लीटर पानी के हिसाब से सत बनाना चाहिए। नीम के तेल का इस्तेमाल भी कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए 1 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर तेल का होना आवश्यक है। 1 एकड़ भूमि के लिए 60 लीटर घोल की आवश्यकता होती है। एक छिड़काव सुबह जल्दी या शाम को करें, दूसरा छिड़काव हर 10 दिन के अंतराल पर करें। छिड़काव के घोल में थोड़ी मात्रा में साबुन अवश्य मिला रहना चाहिए, इससे छिड़काव में आसानी होती है। भंडार में भी नीम की पत्तियों का उपयोग कीटों को रोकने में कारगर सिद्ध हुआ है। नीम का प्रयोग यूरिया की कोटिंग के रूप में धान की फसल में सफलतापूर्वक किया गया है। इसमें यह नाइट्रोजन को अस्थिर करने वाले हार्मोन तंत्र को प्रभावित करता है, जबकि कृत्रिम रसायन कीटों के पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसलिए नीम के प्रयोग से कीटों की अगली पीढ़ी में प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं हो पाती। कीटनाशक के रूप में नीम का प्रयोग सर्वदा उचित है, क्योंकि यह लाभदायक कीटों के लिए सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग समेकित कीट नियंत्रण में एक अव्यय के रूप में किया जा सकता है। यह सस्ता है, सुरक्षित है और आसानी से उपलब्ध होता है तथा इसके प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी, नीम का कृषि एवं पौध संरक्षण में प्रयोग। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

और आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा। पहला गीत लिया है हमने फिल्म गार्ड से, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म वो कौन थी मैं, और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत। नाम है दिल अपना और प्रीत पराई, स्वर है लता मंगेशकर का।

मंगेशकर और साथियों के गाए फिल्म मुगले आजम के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
0: जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समाज कल्याण विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा। 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित करने के दिए निर्देश। प्रदेश दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार का निवेश सम्मेलन आज। साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन पर होगा व्यापक संवाद। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, आज भी कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य

0: न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समाज कल्याण विभाग के कार्य और योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा एक सोसायटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाए। एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के से संचालित है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आईटीआई को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप तथा ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि आईटीआई और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाजत दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने कल जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल प्रदेश दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में जापान के उद्योग जगत के 200 से अधिक उद्यमी और अधिकारी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तर प्रदेश के दौरे पर आया जापानी प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। राज्य सरकार की तरफ से जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निवेश सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान निवेश, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, MSME और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में व्यापक संवाद होगा। राज्य सरकार की तरफ से विश्वास व्यक्त किया गया है कि यह संवाद परक सम्मेलन जापान के साथ साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन को नई ऊंचाई देगा। समाचार कक्ष से रितेश।
1: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र कल अयोध्या में समिति की बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जा रहा ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी रहेगा और इसके मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य।

0: हैं। श्री मिश्र ने बताया कि बाउंड्री वॉल का निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और सिक्योरिटी सिस्टम लगाने में अतिरिक्त 2 महीने लगेंगे।
1: इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहां भगवान राम जी जो

0: वहाँ भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वन गमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाए।
1: गोरखपुर के बाघागाड़ा के पास वाराणसी हाईवे पर ट्रॉलर और रोडवेज बस की टक्कर में वाराणसी के रहने वाले बस चालक की मौत हो गई। कल देर रात हुए इस हादसे में 14 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली तथा घायलों का बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिए। राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ और जलभराव की स्थिति के बीच सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। अयोध्या में कल 283 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की गयी। बारिश के चलते चित्रकूट में कल 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहे। जिला प्रशासन ने यहां आज भी कई स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। प्रयागराज में बीते 2 दिनों में हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समाज कल्याण विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा। 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित करने के दिए निर्देश। प्रदेश दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार का निवेश सम्मेलन आज। साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन पर होगा व्यापक संवाद। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, आज भी कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: प्रतिभा सुंदराम, प्रज की आप पावन धरा को नमन करें, वंदन करें और समस्त प्रजवासियों को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज सबसे पहले आपको सुनमा में खेमचंद यदुवंशी की लिखी नौटंकी गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज यात्रा के प्रस्तुत करता है TN शर्मा। तो आनंद लियो या नौटंकी को।
1: लीजिए प्रस्तुत है नौटंकी गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज यात्रा। इसका आलेख खेमचंद यदुवंशी का है। प्रस्तुत करता है नरेश मल्होत्रा।

0: आज आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे अवसर का पूरा लाभ लेने के लिए आप शीघ्र ही ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान करें।
1: ठीक कहते हो भैया, चलो।
2: भ्रात प्रेम में हो मगन, चले मन हर्षाय।

0: भैया ये मनमोहक और अतरमणीय स्थान कौन सा स्थान है ये?
1: महाराज इस समय आप भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा में हैं और ये श्री यमुना महारानी है।
2: मथुरानी है कृष्ण।

0: राजा नंददास ओलारा नंददास गोस्वामी जी को मंदिर में लेके चलो।
1: दो आज्ञा महाराज। तुलसीदास चलो भैया चलो।

0: आपने सुनी नौटंकी, गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज यात्रा। आलेख खेमचंद यदुवंशी का था।
1: अब भैया आपने आनंद लियो या नौटंकी को। और भैया ब्रज में तो हमारे महादेव बाबाओं ने खूब लीलान के दर्शन करे, संत मुनि दर्शन करे,

और या समय हमारे ब्रज में सावन को महीना ब्रजवासी को खूब खूब आनंदित कर रहे हो। हमारी ब्रज की ब्रजांगनाएं, हमारी बहन, हमारी बेटी कली मोहल्ला चौतरान पे बड़े बड़े वृक्षन पे झूला झूल रहे हैं। संग ही दर्शनार्थी मंदिरन में कहूं सोने के, कहूं चांदी के, कहूं पान के, कहूं मेवान के, आधे आधे हिंडोलान के दर्शन कर आनंद है रहे हैं। कहूं मल्हार गायन है रहे हो, कहूं परंपरागत संगीत सावन में ब्रज की लोक संस्कृति में मल्हार और कजरी की गूंज सुनाई दे है। खूब खूब आनंद हमारे समूचे ब्रजमंडल में, खूब संत ब्रजवासी खूब खूब आनंद ले रहे हैं। आपको सुनवा में ये सावन को सुंदर सो लोकगीत।

अपने आनंद लियो संवेश्वर में या ब्रज लोकगीत को। और हमारे जो ब्रज के आंगनन में तो भैया खूब खूब मल्हार गाई जा रही हैं, रागन में, रागनीन में, बहार में और समस्त रागन में गाई जा रही हैं। झूले गिरधर लाल हिंडोरे माई, संग झूलत प्रशभा नंदनी, बोलत बाचन रसाल, पिय सर पाग कुसुम शोभत पिय, तलक विराजत भाल, प्यारी पहरे कुसुम सारी, चंचल नैन विशाल, ताल मृदंग बहु बाजे बाजत, आनंद उर न समाई। या समय तो खूब आनंद आनंद परस रहो है। यही के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हो है। समस्त ब्रजवासीन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही

0: साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज

0: के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries of the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
3: calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between

किशोर कुमार लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म सागर में, और आइए सुनते हैं शाविर कुमार और लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

0: लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों के गाए फिल्म आखिर क्यों के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता। मलेरिया रोकथाम के उपाय और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी के सिंह। आपसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, जब थोड़ा तापमान होता है, बरसात होती है, तो इन दिनों में हमारा जैसा भी ब्रज क्षेत्र है, आसपास का परिवेश है, मलेरिया रोग होने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मच्छरों का प्रकोप काफी रहता है। हम कई बार थक हार के सो जाते हैं, उतनी सावधानी भी नहीं रखते। तो ये जो मलेरिया जो रोग है, वो कितना हमारे लिए घातक हो सकता है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, क्या बचाव और सुझाव रहेंगे, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जी के सिंह साहब, जो रिटायर्ड CMO रहे हैं हमारे मथुरा में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है जी। तो थोड़ा
2: धन्यवाद।
1: सा मलेरिया जो बुखार है, इसके बारे में बताएं कि ये सामान्यतः है क्या और कैसे फैलता है लक्षणों के आधार पर।
2: मलेरिया एक साधारण बीमारी है
1: जी।
2: जो कि जन स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या बन गई है। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि बैक्टर जनित बीमारी होती है, जो कि प्रोटोजोअल के संसर्ग से और इन्फेक्शन से फैलती है। इसका जो जो बैक्टीरिया होता है वो एक प्लास्मोडियम फैमिली से होता है, प्लास्मोडियम वर्ग से होता है। ज़्यादातर मलेरिया जो है प्लास्मोडियम बायवैक्स या प्लास्मोडियम फाल्सीफेरम इनसे होता है मलेरिया।
1: जी।
2: और जो ये मलेरिया फैलने का जो है, संक्रमित मच्छर जब किसी प्राणी मात्र को काटता है तब वो मलेरिया पैदा कर देता है।
1: सामान्यतः मच्छरों को हम इतने उसमें नहीं लेते हैं, ये तो मानते हैं कि मलेरिया क्या नाम है फैलता है मच्छर से, लेकिन मच्छर हमारे आसपास हैं, उसके जो कारण हैं उन पे कभी हम गौर नहीं करते। ये हमारा एक तरह का एक रहने का तरीका सा हो गया है। तो वो जो कारण हैं जिनकी वजह से ये सब पैदा होते हैं मच्छर, उस पर थोड़ा सा बताएं कि एक आम आदमी को अपने आसपास कैसे देखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इससे मच्छर ही नहीं हो, और मच्छर नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ शायद मलेरिया भी होने की संभावना कम हो जाएगी।
2: बिल्कुल सही है आपका।
1: जी।
2: हमारा किसी भी रोग से बचाव करने के दो ही कारण होते हैं। एक तो है कि जिस कारण से रोग उत्पन्न हो रहा है तो उस कारण को ही हटा दिया जाए,
1: जी।
2: और दूसरा है उसका बचाव। तो मच्छर पनपे नहीं, ऐसा वातावरण हमें अपने सामने पैदा करना है या तैयार करना है। सबसे ज्यादा जो मच्छर होते हैं वो दो तरह के मच्छर होते हैं, एक तो ये गंदगी में ज्यादा रहते हैं और एक सफाई में भी रहते हैं।
1: जी।
2: तो हमारे घर में सबसे ज्यादा जो मच्छर होते हैं वो पानी जो

0: स्रोत हैं, पानी के स्रोत में जैसे कि नालियां, गड्ढे, रूम कूलर्स, टूटी बोतलें, पुराने टायर्स या डब्बे, है ना, ऐसी ही जो चीजें आपके ऊपर छत पे पड़ी रहती हैं, उन खुले हुए स्थानों में मच्छर पनपते हैं। दूसरा, ये जो गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाता है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं
1: जी।
0: और जो घर के बाहर जो ये टूटी जो टायर वगैरह हैं या बोतलें हैं उनमें अक्सर पानी भर जाता है, ऐसी जगह पर ये मच्छर पैदा होते हैं। पानी की टंकियां हैं बहुत बड़ी
1: जी,
0: उनकी सफाई नहीं होती है, जो बर्तन है उनको ढक के रखें तो उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे।
1: तो आसपास का जो हमारा परिवेश है वही इनको पैदा करने में हमारी जो है मदद करता है, और अगर हम आसपास सफाई कर लेते हैं तो शायद इन सब चीज से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे बुखार और उसके लक्षण बाद में होते हैं, जैसे किसी मच्छर ने काटा, अब हमें नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड है या उसके काटने से हमें मलेरिया हो सकता है, तो सामान्यतः जो लक्षण पहले सबसे पहले जब उभर के आएंगे मलेरिया में वो क्या क्या है? एक तो जैसे लोगों को एक अंदाज रहता है कि भाई ठंड लग के बुखार आता है, तो और जो चीजें हैं वो कौन कौन सी? जो
0: देखिए, मलेरिया बुखार में अचानक तेजी से बुखार आता है, तेजी से। दूसरा, उसमें सिरदर्द होता है और बदन दर्द होता है
1: जी।
0: उल्टी भी होती है और ना या उल्टी ऐसा लगता है, और बहुत सर्दी लगती है, दांत भी वो बजने लगता है, कपकपी सी भी छूट जाती है। और कुछ मलेरिया ऐसा भी होता है जो इतना तेज बुखार देता है, जैसे दिमागी मलेरिया हो जाता है जिसको कहते हैं, और उसमें हाँ निद्राजनक हो जाता है या बेहोशी जैसी भी हो जाती
1: जी,
0: है।
1: जी, जी।
0: मरीज को ये इच्छा होती है कि जितने भर कपड़े हैं सारे हमें उड़ा दो, ऐसी उसको फीलिंग्स होती है। और फिर उसको बाद में कभी कभी अचानक गर्मी भी लगती है
1: जी।
0: बहुत ज्यादा पसीना भी आता है और मरीज फिर अच्छा महसूस करने लगता है। बुखार मलेरिया का रोजाना भी आ सकता है, एक दिन छोड़ के भी आ सकता है और तीसरे दिन भी आ सकता है, ये मलेरिया के मुख्य लक्षण
1: जी। आजकल जो और जो बुखार आ गए, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, जो काफी जो है चर्चित भी है, जिनसे परेशानी भी बहुत हो रही है। पहले सामान्यतः बुखार आता था मलेरिया का, हफ्ते 10 दिन हम उससे पीड़ित रहते थे लेकिन रिकवरी हो जाती थी, लेकिन आजकल जो और जो बुखार है वो इससे किस तरह भिन्न है? क्या उनको भी हम मलेरिया की श्रेणी में रख सकते हैं क्या?
0: हाँ, देखिए आपने बोला डेंगू, ये भी मच्छर से जनित बीमारी है, चिकनगुनिया ये भी मच्छर से है, लेकिन इनमें फर्क इतना है कि मलेरिया जो है एक प्रोटोजोअल डिसीज है जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से पैदा होती है, और ये एक वायरस डिसीज है डेंगू, जो कि मच्छर ये भी है लेकिन वो एक तरह का एडीज मच्छर है, उसके काटने से ये डेंगू होता है। और ऐसा ही एक मिलता जुलता है चिकनगुनिया, ये भी वायरस डिसीज है।
1: जी जी।
0: अब इनमें फर्क इतना है कि जैसे मलेरिया आपको लगा, बुखार आया, बुखार उसमें भी आएगा, तेज बुखार आएगा उसमें भी आएगा, ठंड कभी उसमें लग सकती है कभी भी नहीं लग सकती है, लेकिन जो मलेरिया से भिन्न डेंगू है उसमें आपको एक तो कहते हैं कि ये डेंगू बुखार हो गया, यानी जोड़ तोड़ बुखार हो गया, जोड़ों का बुखार हो गया या उसमें रैशेज निकल आए। तीसरा, उसमें जो डेंगू है, डेंगू भी हमारा तीन तरह का होता है कि हेमरेजिक, एक नॉन हेमरेजिक, है ना, और जो हेमरेजिक है तो उसको आपको पता लगेगा कि नाक से खून आ रहा है, मसूड़ों में खून आ रहा है, और जो नॉन हेमरेजिक है उसमें तो यह पता लगेगा कि यह बुखार कैसा भी हो सकता है, वो इजीली यानी सामान्य रूप से 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है।
1: जी,
0: अगर हेमरेजिक है तो उसके लिए हमको तुरंत ही उसके परीक्षण करवा के नजदीक के अस्पताल से उपचार।
1: तो कुल मिलाकर के ये जो डेंगू और जो चिकनगुनिया है वो है तो मच्छर के काटने से, लेकिन वो वायरल डिजीज है, और ये मच्छर के काटने
0: ये
1: से
0: बैक्टीरियल है।
1: बैक्टीरियल और प्रोटोजोआ के द्वारा तैयार होती है। तो इसमें जैसे क्योंकि हम आज मलेरिया की बात कर रहे हैं, इसमें आपने एक तो हमें ये बताया कि ये मच्छर के काटने से होता है, दूसरा आसपास का जो हमारा परिवेश है, गंदगी है और आसपास पानी भरा हुआ है वहां मच्छर पनपेंगे तो ये होगा, तीसरे ये है कि इसे के लक्षण आपने बताए। अब यह कि जब ये हो जाता है तो फिर हम इसको कैसे, कुछ जो इलाज है इसका, इसमें क्या सावधानी हमें रखनी है उसमें?
0: उसको ये है कि क्या करें, पहले तो ये है कि आप उसको पता करने के लिए तुरंत खून की जांच कराएं
1: जी,
0: स्लाइड बनवाएं जिससे कि जो है इसमें मच्छर, कोई मलेरिया का बैक्टीरिया कौन सा है, दो तरह का होता है, बायोवेक्स होता है, फाल्सीफेरम होता है, फाल्सीफेरम मलेरिया बहुत खतरनाक होता है जो कि दिमाग में चला जाता है, तो जिसके कीटाणु हैं अगर परीक्षण में पाया गया कि मलेरिया है और

0: मलेरिया पॉजिटिव है तो उसका पूरा इलाज 15 दिन का लगभग कराना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मलेरिया का जो संक्रमण है, आज संक्रमित मच्छर ने आपको काटा तो निश्चित ही 14-15 दिन तक बुखार आएगा, क्योंकि आधी साइकिल मच्छर में चलती है और आधी लीवर में चलती है, तो इसलिए संक्रमित मच्छर ही काटेगा तभी आपको वो होगा। और बचाव के लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आपको पता लग गया है कि ये बुखार है तो आप जो है सबसे पहले मरीज को जिसको बुखार है, आपको ये तो पता नहीं है कि ये डेंगू है या मलेरिया है, तो चूंकि ये सीजनल बीमारी है, ज्यादातर जुलाई से नवंबर तक होता है, तो सबसे पहले हम मरीज को आइसोलेटेड कर देंगे। आइसोलेटेड का मतलब मच्छरदानी में उसको सुलाएंगे, जिससे कि उसको बुखार आया हुआ है, अगर उसको मच्छर ने काट लिया तो वो संक्रमित हो जाएगा और दूसरे
1: जी,
0: को
1: दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को
0: को
1: काटेगा
0: भी
1: तो वहां भी
0: मलेरिया
1: होगा,
0: कर
1: तो
0: देगा।
1: एक तरह से ये भी एक
0: हाँ
1: तरह से इन्फेक्शियस ही हो गया
0: जी
1: परिवार में।
0: हाँ हाँ
1: अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है
0: हाँ
1: और उसको मच्छर काट के परिवार के दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों को काटता है
0: जी
1: तो वहां भी फैलने की इसकी संभावना है, तो उस व्यक्ति को एक तो जो है उस संक्रमण से हमें बचाना
0: बचाना
1: है।
0: है। दूसरा ये है कि जो भी मच्छर हुआ है, अगर मान लो मच्छरदानी नहीं है और 5-6 दिन तक नहीं चला सकते हैं, तो मच्छर निरोधक जो कि या तो वो मारती हैं या बाहर कर देती हैं, ऐसी कॉयल या ऐसी क्रीम या तेल लगा सकते हैं, जिससे कि वो मच्छर वहां पर आएगा नहीं और मच्छर संक्रमित नहीं होगा।
1: जी
0: हमको सबसे पहले मलेरिया को रोकने के लिए, मरीज की सुरक्षा के लिए, मच्छर नहीं आने देना। मच्छर आएगा, संक्रमित करेगा, दूसरे को काटेगा, फिर मच्छर को, फिर मलेरिया फैलेगा। ये सबसे बड़ा
1: तो
0: कारण
1: उसके संक्रमण से हमें बचाना है, उसको
0: संक्रमण
1: फैलने
0: से
1: को बचाना
0: फैलने
1: है।
0: को जाना है।
1: इलाज में क्या क्या
0: इलाज में
1: सावधानियां?
0: सबसे बड़ी यह है कि अगर किसी सबसे पहले तो उसको तेज बुखार आता है, तेज बुखार की स्थिति में मरीज को ठंड लगती है, मरीज मांगता है कपड़े, तो कोशिश ये करिएगा कि मरीज को ज्यादा कपड़े ना उड़ाएं। अगर ज्यादा कपड़े उड़ाएंगे तो एक तो तेज बुखार हो रहा है और उसको
1: टेम्परेचर और बढ़
0: और ज्यादा
1: जाएगा।
0: बढ़ जाएगा। तो पहले तो यह है कि बुखार अगर तेज है तो हमें उसका बुखार का रोकने का, अगर ज्यादा 110 से बुखार है तो हम उसको पैरासीटामोल की कोई गोली देके तोड़ सकते हैं या हाइड्रोथेरेपी कर सकते हैं। उस समय बाई दी वे हम पे कोई गोली भी नहीं है तो हम कोल्ड स्पोनिंग यानी कि पानी का भीगा हुआ कपड़ा उसके माथे पर रख सकते हैं। जब तक सर्दी लगती है जब तक तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब मच्छर काटता है तो उसकी ब्लड स्ट्रीम में उसका पहुंचता है विष और वो साइकिल करता है, तब हमको शिवरिंग होती है, ठंड लगती है। तो ऐसी स्थिति में तो वो कपड़े ही उड़ाएंगे। कपड़े उड़ाने के बाद कोशिश करिए ज्यादा ना उड़ाएं, फिर स्पॉन्जिंग कर दें। अगर आपके पास तेज बुखार है तो एक पैरासीटामोल की गोली दे दें। उसके बाद परीक्षण कराएं, परीक्षण कराने के बाद स्लाइड से जब पता लगे हमको कि कौन सा मलेरिया है, तो जो साधारण मलेरिया है जो एक दिन छोड़ के आता है या दूसरे दिन आता है या रोजाना आता है, तो ये इसकी साइकिल होती है, जैसे ही ब्लड में से निकल जाएगा लिवर में पहुंच जाएगा तो इस स्वतः ही बुखार ठीक हो जाएगा। और जो फाल्सीफेरम मलेरिया है, दिमागी मलेरिया है, उस जो दिमाग में सूजन पैदा कर सकता है, रोगी को दौड़े भी पड़ सकते हैं, बेहोशी भी हो सकती है, ऐसी स्थिति को मरीज को तुरंत ही सरकारी अस्पताल या नजदीक के किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य या चिकित्सक के पास ले जाएं, उसको लगभग 15 दिन तक चिकित्सक की देखरेख में उसका पूर्ण इलाज कराएं।
1: यानी कुल मिलाकर के जैसे ही लगता है कि आपको बुखार हो गया है, आपने अगर परीक्षण करा लिया है, ब्लड परीक्षण कराना ही चाहिए, और उसमें जब एक बार ये निदान हो जाता है कि मलेरिया है,
0: जी
1: तो फिर एक उचित डॉक्टर या उचित अस्पताल में
0: हाँ
1: उसका रेगुलर इलाज तब तक कराएं जब तक कि डॉक्टर ये सुनिश्चित ना कर दे कि अब जो है आप
0: हाँ
1: ठीक है।
0: ठीक
1: उसमें
0: है।
1: चलते चलते कुछ सावधानी के तौर पर कहना चाहें उसमें।
0: सावधानी ये है कि एक तो पनपने नहीं पाए, मच्छरों को पनपना रोकना यानी उसका प्रजनन रोकना है। दूसरा, फुल बाजू के कपड़े जिससे कि मच्छर ना काटे। ज्यादातर बच्चे जो है बाहर छोटे जो होते हैं उनको नेकर या टी शर्ट न पहनाए जिससे कि उनको मच्छर काटेंगे, है ना। तो हमारा पहला उपचार तो यह है कि वातावरण को आसपास के झाड़ी पैदा ना होने दें, ठीक है। पेड़ पौधे हुए तो उनकी सफाई रखें, गमलों में पानी बदलते रहें, और अगर गड्ढा है तो उसको मिट्टी लगा के उसको रोक दें। ऐसे गड्ढे हैं जहां पानी को हम नहीं निकाल सकते हैं, उसमें आप या तो डीजल, पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, जिससे उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे। और जहां तक हो शरीर को ढक के रखें, सोते हैं रात में, अगर आपके यहाँ व्यवस्था है तो जाली लगाएं, अगर जाली नहीं है तो मच्छर

0: का प्रयोग करें, वो भी नहीं है तो कोई कॉयल या
1: जी,
0: क्रीम
1: यानी कुल
0: या क्या,
1: मिलाकर के मच्छरों से
0: बचाव,
1: बचना है
0: मच्छरों
1: तो
0: से बचाव करना है,
1: जी।
0: तभी मलेरिया से आपको बचाव हो
1: तो कुल
0: सकता
1: मिलाकर श्रोता बंधु,
0: है।
1: बातचीत का निष्कर्ष यही है कि हमारे आसपास का जो परिवेश है उसे साफ सफाई रखनी है, मच्छरों को नहीं पनप देना देना है, और अगर मच्छर आसपास हैं तो फिर उन वो सुरक्षा करनी है जिससे वो हमको काट नहीं पाए, और अगर काट जाते तो फिर संभावनाएं बढ़ जाती है मलेरिया की। अगर मलेरिया एक बार निदान में आ जाता है, जानकारी में आता है, तो उचित इलाज जरूर कराएं, क्योंकि कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है अगर आपने देखभाल नहीं की है। तो वैसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन आसपास के परिवेश को हमें जरूर साफ रखना। तो ये आज हमारी बातचीत थी मलेरिया के
0: एक
1: संबंध में
0: इसमें समाज में है
1: जी।
0: कि जैसे अब हमारे विभाग का कोई भी कर्मचारी जो कि छिड़काव करने के लिए जाता है उसको अक्सर मना कर दिया जाता है, तो जनता से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो उसको जो दवाई छिड़काव आता है विभागीय, उससे दवा छिड़कवाएं। दवा छिड़कवाने समय हर कोने में या फोटो में या फ्रेम में जहां मच्छर पनपते रहते हैं, क्योंकि पनप मच्छर में ये सास ये गुण है कि पहले आपको वो मच्छर काटेगा फिर वो आराम करेगा, तो आराम करने वाली जगह पर भी दवाई
1: जी
0: छिड़कवाएं।
1: जी तो उन व्यवस्था का भी सहयोग हमें करना है।
0: जरूर
1: तो डॉक्टर जीके सिंह साहब हमें जानकारी दे रहे थे, हम उनका धन्यवाद करते हैं और यही संकल्प करते हैं कि मलेरिया को फैलने से हमें रोकना है, बचाना है। डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता, मलेरिया रोकथाम के उपाय, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जी के सिंह, आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: कल एक और गीत और इस गीत के बाद और भी बहुत कुछ है मेरे पास, जुड़े रहिएगा म्यूजिकल दिल्लगी में।
1: जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने की सम्मेलन में वीबीजी रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, रोजगार सृजन और गाँव में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि वीबीजी रामजी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए तथा पात्र श्रमिकों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 10 अगस्त को अमरोहा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिव्यांगजन विभाग, सेवायोजन कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन विकास भवन में किया गया। मेले में कुल 8 कंपनियों द्वारा 89 उपस्थित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 56 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी व हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में हर वर्ष लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में कुंभ मेले की तर्ज पर पेंटून पुल की संभावनाओं को लेकर डीएम अमरोहा डॉक्टर नितिन गौड़ और डीएम हापुड़ कविता मीणा ने तकनीकी टीम के साथ 17 अगस्त को तिगरी में मंथन किया।
2: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
3: गौतम बुद्ध नगर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप शामिल हुए। ध्वजारोहण के बाद मंत्री ने पौधारोपण करते हुए कहा कि स्वच्छ एवं हरा भरा पर्यावरण भावी पीढ़ियों के लिए हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह आजादी हमें असंख्य महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि उन महान वीरों के बलिदान को स्मरण करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संकल्प लेने का दिन है। वहीं जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने झंडा फहराकर जिला मुख्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और उत्कृष्ट सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने व बाढ़ सुरक्षा एवं बचाव तैयारियों की समीक्षा को लेकर लोक निर्माण राज्य व प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए सभी विभाग तैयारियों के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहें तथा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने विशेष रूप से तीनों प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इंडिया बायो एनर्जी एवं टेक एक्सपो 2026 11 से 13 अगस्त तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। एक्सपो में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने हिस्सा लिया। एक्सपो में देश विदेश से आए प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञों और बड़ी संख्या में उद्यमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सीबीजी इंडस्ट्री में किसानों को समृद्ध बनाने की बहुत ताकत है।
4: इस सेक्टर में कितनी ताकत है हमारे किसानों को समृद्ध बनाने की, इसमें कितनी ताकत है हमारे गोपालकों को, पशुपालकों को समृद्ध बनाने की। खेती करने वाले किसान को तो समृद्ध बनाना ही है, उसका कचरा जो निकल जा रहा है उस कचरे का वो कंचन बनाते हुए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं गोल्ड बनाते हुए, हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं और किसान की आमदनी को तो हम बेहतर बनाएंगे। साथ में एनवायरमेंट का भी फायदा होगा, साथ में हमारी इंडस्ट्री चलेगी और हमारे नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में उनको नौकरी का अवसर मिलेगा।
3: वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है और यहां सबसे अधिक कृषि अपशिष्ट उपलब्ध है। इस अपशिष्ट को नवाचार के माध्यम से ऊर्जा में बदला जा सकता है।
5: उत्तर प्रदेश के पास ये अकूत संसाधन जिनका सदुपयोग करके हम कैसे ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ सके, बायो एनर्जी और आपके इस टेक एक्सपो के माध्यम से। अभी तक हमारे पास समस्या थी पराली जलाने, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सबके आगमन ने हमें उसके उपयोग की संभावनाओं को खड़ा

0: सीबीएसई नॉर्थ जोन वन लॉन टेनिस एवं शूटिंग बालिका वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन जेपी पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 772 शूटिंग खिलाड़ी, 742 लॉन टेनिस खिलाड़ी सहित 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
1: फिट इंडिया मूवमेंट का भी आह्वान करें, देश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास हर हाल करें, तो देश पदक जीत रहा, खेलों में आगे बढ़ रहा, युवाओं को खेल के प्रति जुड़ाव होगा। और उसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और आह्वान किया, बड़ा सांसद खेल कूद प्रतियोगिता के माध्यम से भी प्रतिभा को तलाशने और तराशने का काम बहुत तेजी के साथ देश में प्रारंभ होगा।
0: उत्तर प्रदेश की सृजनशील प्रतिभा नवाचारकर्ताओं, समाज सेवियों एवं परिवर्तन के वाहकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से नमस्कार फाउंडेशन द्वारा ग्रेटर नोएडा में नमस्कार उत्तर प्रदेश राज्य सृजनकर्ता सम्मान 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज प्रतिभा, नवाचार और युवा शक्ति का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। ऐसे सम्मान समारोह युवाओं की सृजनात्मक क्षमता को नई दिशा प्रदान करते हैं तथा उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
4: श्रोताओं, बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझाना, उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, पर्यावरण का महत्व समझाना और बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता लाना ही हमारा उद्देश्य है। यह हमारा उद्देश्य ही नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य भी बनता है कि हम बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताएं। पर्यावरण को साफ व स्वच्छ कैसे बनाए रखना है, इसके विषय की बच्चों को जानकारी दें। स्वच्छ पर्यावरण के लाभ व पर्यावरण को दूषित करके उसके नुकसानों को बच्चों को समझाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्यावरण की गुणवत्ता के बारे में चिंतन सबसे पहले वैज्ञानिकों ने किया और धीरे धीरे समाज के सभी वर्गों में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के देशों में इसने स्थान पाया और व्यापक रूप से सोचने और विचार विमर्श करने का यह विषय बन गया। पिछले कुछ वर्षों से आम जनता ने भी इसमें भागीदारी निभाई और पर्यावरण से संबंधित अच्छाइयों, बुराइयों और अनेक समस्याओं के हल खोजने में अपनी रुचि व्यक्त की। यद्यपि यह रुचि एक आवश्यकता तो थी लेकिन पर्यावरणीय गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए कुछ प्रबुद्ध लोगों ने पर्यावरण संकटों को दूर करने के लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने आप को, समाज को, परिवार को, बच्चों को वास्तव में शामिल करने का सुझाव दिया। आज वर्तमान में पर्यावरण से बच्चों को जोड़ने के लिए पर्यावरण विषय का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। पर्यावरण शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान या एक विषय तक ही सीमित नहीं रखकर उसे रोजमर्रा की आदतों में, जीवन शैली में अपनाना होगा। उन आदतों को जिनसे पर्यावरण को साफ रखा जा सकता है उन्हें पहले हम अपनाकर फिर बच्चों को सिखाएं। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम कहते तो हैं लेकिन करते कम हैं, उनको हमें करना होगा। जैसे हमें बच्चों को पैदल चलने के फायदे समझाने होंगे, उनको बताना होगा कि पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है और उससे पेट्रोल की खपत भी कम होती है, क्योंकि आज के बच्चे पैदल चलने से, घूमने से बहुत बचते हैं। थोड़ी सी दूर भी जाना होता है तो स्कूटर, गाड़ी, मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, जिससे न सिर्फ उनके स्वास्थ्य का बल्कि पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे पेट्रोल की खपत बहुत बढ़ रही है। चूंकि पर्यावरण शिक्षा में क्रियात्मक पक्ष का विशेष महत्व होता है, पाठ्य सामग्री क्रियाओं से शिक्षक तथा छात्रों को कुछ न कुछ पर्यावरण संबंधी कार्य करने का अवसर दिया जाता है, जिससे दोनों को अपने व्यवहारिक पक्ष को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। इसमें क्रियाओं के आयोजन द्वारा पर्यावरण जागरूकता विकसित करने हेतु शिक्षकों के साथ साथ परिवारजन भी अपनी उपस्थिति में बच्चों को उत्प्रेरित कर भौतिक पर्यावरण की वर्तमान स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं। बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण व छोटी छोटी बातें हैं, जैसे बच्चों को

पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना, हर बच्चे को अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने के लिए कहना, उसकी देखभाल करने के लिए समझाना और उससे पर्यावरण को कितना फायदा होगा यह हमें बताना होगा। अपने आसपास के पार्कों एवं जलाशयों की सफाई करवाना तथा स्वच्छता के प्रति जन साधारण को जागरूक बनाने के लिए स्थान स्थान पर बच्चों द्वारा स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखी हुई संदेश

सुंदर अक्षरों में लिखी हुई संदेश पट्टिकाएं लगवाना, अपशिष्ट पदार्थों, कचरा इत्यादि को उपयुक्त स्थान पर डालने की आदत विकसित करना, क्योंकि गांव में ही नहीं आज शिक्षित समाज में भी यह भारी कमी है। चलते चलते नदी में कुछ भी कचरा डाल देते हैं, घरों के बचे हुए पूजा के सूखे फूल पत्तियां आदि सब नदी में डाल देते हैं। बच्चों को अपने स्थानीय पर्यावरण के सुधार तथा विकास हेतु प्रयोगात्मक कार्यों हेतु प्रेरणा देना, जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा संचेतना का विकास करना, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सामग्री चार्ट चित्र पोस्टर आदि बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, छात्रों को पर्यावरण शिक्षा के प्रकरणों पर कहानी तथा निबंध लिखने को प्रोत्साहित करना, सड़क पर चलते समय कहीं पर भी थूक देना, शौच करना, खाते हुए फलों के छिलके सड़क पर फेंक देना, ये सब करने से हमें बच्चों को मना करके समझाना है कि इससे कितनी गंदगी और बीमारियां होती हैं और पर्यावरण खराब होता है। इसलिए हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में हम अच्छी आदतों का विकास करें और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाएं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता। आलेख और वाचन था नीलिमा शर्मा का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा। विषय है प्रार्थना की उपयोगिता, विषय पर गांधी जी के विचार और प्रस्तुति है आगरा केंद्र की।

और अब प्रार्थना की उपयोगिता विषय पर बापू के विचार। प्रार्थना की उपयोगिता के विषय में मेरे मन में शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रार्थना में आप अशुद्ध विचार से बच जाते हैं। ये कोई कम उपयोगिता नहीं, लेकिन ये तो पहली सीढ़ी है। ये जरूरी नहीं कि प्रार्थना करते समय हम उसके अर्थ में ही लीन रहें। जब हम प्रार्थनामय हो जाते हैं तो अर्थ का भान नहीं रहता। शुद्धतम स्थिति में अर्थ के परे पहुंच जाते हैं। उस दशा में भान मात्र ईश्वर का रहता है। भाषा बाधा रूप बन जाती है। मैं इस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता। प्रार्थना का हेतु तल्लीन होना है। सामाजिक प्रार्थना का हेतु समाज के रूप में तल्लीन होना है। व्यक्ति की समाज में डूब जाना है। व्यक्ति समाज में और समाज ईश्वर में लीन हो जाता है। ओम के उच्चारण में अथवा राम नाम में कौन सा अर्थ है? जो उसमें है वही प्रार्थना के श्लोकों आदि में है। मुझे इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं कि जो ये समझकर प्रतिदिन प्रार्थना का उच्चारण करता है वो अंत में परम शांति पाता है। जो समाज को चाहता है उसे सामाजिक कार्य में यानी सामाजिक प्रार्थना में अरुचि होनी ही नहीं चाहिए। जो ईश्वरमय बन जाता है वो तो समूचे संसार को ईश्वरमय देखता है। कहना होगा कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सामाजिक कार्य में सामाजिक प्रार्थना पहली सीढ़ी है। हबशियों से लेकर यूरोप के ईसाइयों, अरब के मुसलमानों और भारतवर्ष के हिंदू

यूं तक कोई प्रार्थना के बिना अपना काम चला नहीं पाए। गिरजाघर, मस्जिद और मंदिर जमींदोज हो जाएं तो समाज भी जमींदोज हो जाएगा। ईश्वर के निकट तो 24 घंटे स्वर्गीय गान होता ही रहता है, हम उसकी कल्पना भर कर सकते हैं। सामाजिक प्रार्थना उस गान में सम्मिलित होने का एक अल्प प्रयत्न है। जो उस गान में सम्मिलित हुए हैं उनके लिए तो नित्यानंद है। प्रार्थना अंततः श्रद्धा का विषय है, इस श्रद्धा को टिकाने लायक रस उसमें उड़ेलने होंगे। आखिर इस भावना को लेकर समाज में बैठेंगे और तन्मय होंगे तो वही प्रार्थना हो जाएगी, फिर वो चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना बोला जाए। दुनिया में सामूहिक मूक प्रार्थना भी प्रचलित है। रोमन कैथोलिकों में भक्त लोग घंटों मूक भाव में बैठे रहते हैं और प्रार्थना में ध्यानग्रस्त रह सकते हैं। हमें तो जैसे भी बने शांति प्राप्त करनी है। कई वर्षों से शुद्ध हेतु पूर्वक प्रार्थना से चिपटे रहे हैं, इसलिए हमें किसी दिन सच्ची कुंजी मिल ही जाएगी। इस बीच लोग आने लगे हैं, इससे संतुष्ट रहना। कुछ वस्तुओं का उपाय केवल काल है, हम जितना खोदते हैं उतना बिगड़ता है और धीरज से बाट जोहते हैं तो उपाय मिल जाता है। मुझे ईश्वर का स्मरण प्रतिक्षण रहता है, इसका अर्थ ये है जागते हुए ऐसा कोई समय नहीं कि जब मुझे ये भान न हो कि ईश्वर मुझ में है और सब देखता है। ये भान बुद्धि को है, अभ्यास से हुआ है, हृदय को है, सो नहीं कहता क्योंकि मैं अपने को भयमुक्त नहीं मानता। सर्पादि का भय तो है ही, मृत्यु को मित्र समझते हुए भी देखता हूं कि दिल की गहराई में जीने की इच्छा भी रही है, लगता है जीना प्रिय है। इसी के साथ मृत्यु से भेंटने की तैयारी भी लगती है, ऐसी विचित्र भावना है। इस निर्बलता के कारण मैं ये नहीं कह सकता कि हृदय में ईश्वर का वास हुआ है। ये दूसरी बात है कि बुद्धि कबूल करती है कि वो हृदय में रहता है। जिसे ये अनुभव जन्य ज्ञान है कि ईश्वर हृदय में रहता है, उसे देह के विषय में अत्यधिक अमूर्छा होगी। देख सकता हूं कि मैं इस स्थिति तक पहुंचा नहीं हूं, तिस पर भी बुद्धि ने जिसे स्वीकार किया है वो चीज इतनी मजबूत है कि वो हृदय में उतर रही है, ऐसा भी प्रतीत होता है। ये थे प्रार्थना की उपयोगिता विषय पर बापू के विचार। और अब सुनते हैं डीवी पलुस्कर के स्वर में बापू का प्रिय भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। विषय था प्रार्थना की उपयोगिता विषय पर गांधी जी के विचार, और प्रस्तुति थी आगरा केंद्र की। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में ये देशगान।

सुन रहे थे संबेश्वर में ये देश गान एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार है वृंदावन पांड्या। आप प्रस्तुत कर रहे हैं भजन जो सुख हो तो गोपाले गाए। सुनते हैं ये प्रथम रचना।

सूरदास की रचना जो सुख होत गोपाले गए, और सुनते हैं एक और रचना लाल लग्यो संग डोले।

लोमड़ी की ये रचना लाल शाम लगे संग डोले, और सुनते हैं ये रचना मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। स्वर है वृंदावन पांड्या का।

गीत रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता थे। कलाकार थे वृंदावन पांड्या। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।

0: 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक आवश्यक सूचना सुनिए।
1: सावधानी अपनाएं, जीवन बचाएं। डूबने से बचाव के लिए आप सभी से एक विशेष अपील। आपकी जरा सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जल स्रोतों के पास जाते समय इन जरूरी सुरक्षा उपायों का हमेशा पालन करें। सुरक्षा के लिए क्या करें? अगर आपको तैरना नहीं आता है तो नदी, नहर, नाले या तालाब में बिल्कुल न जाएं और अपने परिजनों को भी ऐसा करने से रोकें। बच्चों को पुलियां या ऊंचे टीलों से पानी में छलांग लगाकर नहाने से सख्ती से रोकें। केवल बेहद जरूरी होने पर ही पानी में उतरें और पानी की गहराई का हमेशा ध्यान रखें। क्षमता से ज्यादा भरी हुई यानी ओवरलोडेड नाव में बिल्कुल न बैठें। जब भी किसी नदी, पोखर या तालाब में सामूहिक रूप से स्नान करने जाएं, तो अपने साथ 10 से 15 मीटर लंबी एक मजबूत रस्सी, धोती या साड़ी जरूर रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी डूबते व्यक्ति को बचाया जा सके। इन बातों की अनदेखी बिल्कुल न करें। नदियों, नहरों और जलाशयों के पास लिखे हुए चेतावनी बोर्ड की कभी अवहेलना न करें। छोटे बच्चों को घाटों और पानी के बिल्कुल पास न जाने दें। किसी के उकसावे में आकर या जोश में पानी में छलांग न लगाएं। नदियों और घाटों पर रीति रिवाजों और संस्कारों का निर्वहन करते समय विशेष सावधानी बरतें। नदी या तालाब में तैरते या नहाते समय कोई स्टंट न करे और खतरनाक तरीके से सेल्फी न ले। आपकी यह गलती जानलेवा हो सकती है। याद रखें, आपका जीवन आपके परिवार के लिए अनमोल है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
0: अभी आप सुन रहे थे ये आवश्यक सूचना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

अभी आपने सुना आशा भोसले भूपेंद्र और साथियों को फिल्म एतबार में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर बाबला मेहता को, फिल्म का नाम है चांदनी।

मनहर उदास अन्नादा पोडवाल और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म राम लखन में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

0: लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया में।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए ये सूचना।
2: सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नाव दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सभी नौका चालकों से एक विशेष अपील। यात्रियों की सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए नाव चलाते समय इन सुरक्षा नियमों का पालन करें। नौका चालक कृपया ध्यान दें। आपको क्या करना है? अपनी नाव में पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट हमेशा साथ रखें। यात्रा शुरू करने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षा नियमों की जानकारी जरूर दें। अपनी नाव का उचित रख रखाव करें और ट्यूब या अन्य तैरने वाले उपकरण हमेशा साथ रखें। किसी भी आपात स्थिति के लिए आपदा संकेत देने वाले उपकरण अपने पास रखें। यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी लगातार लेते रहें। पेट्रोल, डीजल या किसी भी अन्य ज्वलनशील वस्तु को नाव में एक सुरक्षित जगह पर ही रखें। आसपास चल रही अन्य नावों पर नजर रखें और मदद मांगने के लिए संचार उपकरण हमेशा साथ लेकर चले। नौका चालक यह गलतियां बिल्कुल न करे। नाव पर कभी भी तय सीमा से अधिक भार न होने दे। नाव पर बैठे सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट पहनाए और स्वयं भी पहने। नाव चलाते समय किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करे। लालच में आकर क्षमता से अधिक यात्रियों को नाव में न बिठाएं। मौसम खराब होने या तेज हवाएं चलने की स्थिति में नाव का उपयोग बिल्कुल न करें। सूर्यास्त के बाद नाव संचालित ना करें। प्रशासन द्वारा तय किए गए प्रतिबंधित क्षेत्रों में नाव लेकर न जाएं और सबसे जरूरी, नाव को बहुत तेज गति से न चलाएं। आपकी एक छोटी सी सावधानी कई लोगों का जीवन बचा सकती है। नियम अपनाएं, दुर्घटना से बचें।
1: अभी आपने ये सूचना सुनी। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
0: का आनंद इस समय आप आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र से ले रहे हैं।

अभी आपने सुना उदित नारायण अलका याग्निक को फिल्म अकेले हम अकेले तुम में, और आइए सुनते हैं अलका याग्निक उदित नारायण को। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म हम आपके हैं कौन में, और आइए सुनते हैं सोनू निगम चित्रा को प्यार किया नहीं जाता फिल्म में।

लता मंगेशकर और साथियों के गाए फिल्म राम तेरी गंगा वैली के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति दे रहे हैं संजय सारस्वत।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: डी आर नागानी हूँ चक्का बड़ा कैंप से। जी
0: नरवानी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद सर।
0: कैसे हैं आप
1: बहुत बढ़िया। सामान भी बरसात महीने में
0: जी? बारिश हो रही है आपके यहाँ?
1: यहाँ तो कल सब बरस चालू, अभी तक चालू है।
0: अच्छा,
1: जी हाँ, 24 घंटे हो गए, बंद ही नहीं हुई है।
0: और हमारे ब्रजमंडल में बारिश ही नहीं हो रही है इस बार।
1: तो बोलिए, बाकी बिहार जी को तो व्यवस्था कर देंगे।
0: बिल्कुल, प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं।
1: जी सर बिल्कुल। नहीं, होगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सब जगह होगी, बारिश ऐसी बात नहीं है।
0: और घर परिवार में सब अच्छे हैं सर?
1: बिल्कुल सब बढ़िया
0: ठीक है, तो आज
1: सर।
0: क्या फरमाइश रहेगी बताइए।
1: एक बात तो रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए
0: जी
1: जो बात को खत्म हो जाए, बल्कि रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो मगर सब आसपास हो। मतभेद बारिश जैसे होने चाहिए जो बात को खत्म हो जाए, पर प्रेम और विश्वास हवा जैसा होना चाहिए जो दिखाई न दे पर हमेशा साथ रहे।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: चलिए सर, जैसे पानी पड़ा तो रिमझिम गिरे सावन।
0: ठीक है, ये गीत आपको सुनवाते हैं। नारवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो,
1: सर जी जय श्री महाकाल। सर
0: जय महाकाल।
1: जी राधे राधे। शिवालोहट एमपी विदिशा से
0: शिवाजी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
1: जी। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: आपका फोन तो अब अक्सर लग जाता है। आपका स्वास्थ्य ठीक है क्या? कुछ ऐसे ही लग रहे हैं
1: सर
0: आज।
1: नहीं, सर मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ और बढ़िया पेड़ पौधे लगा के अभी आपको शांति फोन मिला रहे थे
0: जी
1: और
0: जी
1: आपसे बातचीत हो रही है तो बहुत खुशी हो रही है सर।
0: सावन के इस महीने में तो आपके उज्जैन में बहुत इस समय मेला लगा होगा, बहुत अच्छी रौनक होगी।
1: जी बिल्कुल, ये समझिए कि अभी कांवड़ का सिलसिला चल रहा है सर जी।
0: जी
1: महाकाल बाबा को कांवड़ चढ़ाते हैं, पूरे प्रदेश से लोग पैदल जाते हैं वहाँ पे,
0: जी जी
1: तो कांवड़ चढ़ाते हैं फिर चिपरा नदी से भर के ओम कालेश्वर तक जाते हैं सर जी।
0: हाँ, ओमकारेश्वर तक जाते हैं। सही कह रहे हैं आप।
1: जी
0: चलिए,
1: हमारे प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग हैं तो दोनों पे ही अभी ये समझिए बहुत जन फैलाव है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये सावन का महीना तो बाबा को वैसे भी बहुत प्रिय है।
1: बिल्कुल सर जी, बाबा को भी प्रिय है और भक्तजनों को भी प्रिय है।
0: जी, आज
1: जी
0: क्या
1: सर।
0: फरमाइश रहेगी बताइए कार्यक्रम में।
1: सर जी मूवी का नाम है आई मिलन की रात और उसमें एक गाना है सावन का महीना आया है घटा से बरसा है पानी।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी सर जी जय श्री कृष्ण।

0: हेलो
1: हेलो आकाश सुहाणी।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी। सरस सुहा मीठा मीठा।

0: नमस्कार उदय, नमस्कार।
1: नमस्कार गर्ग साहब, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं और बहुत चुस्त हैं।
1: चलिए ऐसे ही स्वस्थ मस्त और चुस्त बने रहिए आप।
0: जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
1: आपकी आवाज सुन के आनंद आ जाता है, इतने खुश मिजाज हैं आप।
0: हम तो जब आप लोगों से जिस दिन बात कर लेते हैं उस दिन हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है।
1: जी जी जी
0: जी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बातें करने में, आनंद ही कुछ और आता है।
1: जी, और क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम में?
0: जी आज हम ये कहना चाहेंगे, एक बड़ा खूबसूरत गीत है,
1: जी
0: फिल्म का नाम है भरोसा।
1: जी जी
0: गाने के बोले, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे और मुझे आने वाले कोई रास्ता बता दे।
1: ठीक है गर्ग साहब, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
0: हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, साधुवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो तारासी जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं भी आपका भाई छोटा बोल रहा हूँ, चंद्रपाल शर्मा, पचावर
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: से।
0: अच्छा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हाँ, पहले भी दो बार बात हो चुकी है आपसे। हाँ,
0: जी, कैसे हाल चाल हैं आपके?
1: हाल चाल बहुत अच्छे हैं।
0: क्या कर रहे
1: और
0: हैं आप?
1: हम तो यहाँ पर घर को ही काम करते हैं,
0: काय का काम है आपका?
1: खेती बाड़ी का है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो
1: और
0: चलिए,
1: बताइए, आप सब बढ़िया?
0: हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आपको?
1: कार्यक्रम बहुत अच्छा।

0: रहे हो, सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हो।
1: ऐसे ही सुनते रहा करिए, हमसे बातें करते रहा करिए।
0: करते हैं
1: आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी।
0: खाना है दिल पे चरखा, प्रिया प्रिया तूने क्यों बुला दिया।
1: ठीक है चंद्रपाल जी, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कॉल शामिल करने के लिए। और नमस्कार सर।
1: नमस्कार नमस्कार।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार संजय जी।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: वरवड़ बकाल बोल रहे हैं ना, महाराष्ट्र से नारायण आगे बोल रहा हूँ ना डॉक्टर
0: नारायण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी। धन्यवाद सर। इधर आए भिलाई छत्तीसगढ़ में सम्मेलन है।
0: जी, आज तो सभी लोग मित्रगण
1: सर
0: वहीं एकत्रित हैं आप।
1: सभी जो भी आपके आकाशवाणी मथुरा में आए थे सभी साथ में गए। हाँ
0: श्रोताओं का अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा है आपके यहाँ
1: हाँ सर
0: भिलाई
1: यहाँ
0: में।
1: भिलाई।
0: बिल्कुल अच्छी बात है, शुभकामनाएं सब लोगों को हमारी तरफ से।
1: धन्यवाद सर जी।
0: और सब बढ़िया है परिवार में
1: सर
0: आपके?
1: भाव सब बढ़िया है सर जी। गिफ्ट
0: आज
1: सुनना है
0: बताइए क्या फरमाइश रहेगी
1: सिंदूर का, गिफ्ट सुनवा दीजिए।
0: जी। कौन सा?
1: पतझर सावन
0: बसंत बहार।
1: बसंत बहार।
0: ठीक है, आगे साहब सुनवाते हैं
1: धन्यवाद
0: आपकी पसंद का गाना। शुक्रिया, आपका
1: धन्यवाद
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद सर।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम अर्पण।

साथियों, सहयोग एक अनमोल तोहफा है जो देने में भी अच्छा लगता है और मिल जाए तो भी अच्छा लगता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसके हर दुख दूर कर लेता हूँ और उसके हर दुख को अपना ही समझ लेता हूँ।

रितु पाठक को भी आपने सुना फिल्म तेवर में। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन इस घर की चाबी लौटानी ही पड़ेगी, इसीलिए हमें मोह कम और इंसानियत ज़्यादा रखनी चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का मोह छोड़ दो और सिर्फ हरि का ध्यान करिए।

फागुनी पाठक, के देव और करसन के सुरों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म लीला में। इस जगत में अहंकार सब में होता है, इंसान हो या कुदरत। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी शक्ति और सामर्थ्य के गुमान में अहंकारी हो जाते हैं और अपने ही हाथों अपना भाग्य बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपने मन से ध्याएगा मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।

अभी आपने सुना रविंद्र साथी की आवाज़ में ये गीत फिल्म युग पुरुष से। चलते चलते साथियों, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि किसी भी अच्छे काम में अगर अहंकार आ गया तो वो काम अच्छा नहीं होता, क्योंकि कहते हैं जहाँ अहंकार वहाँ ईश्वर नहीं होते। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि तुम मुझे सच्चे मन से याद कर, तुम्हें तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आपका अपना कार्यक्रम गीत बात और SMS। स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे कार्यक्रम में। आज आपके साथ मैं हूं आपकी RJ मित्र चंद्रा खत्री। नमस्कार साथियों, हमसे जुड़ रहे हैं लोहारीडीह से यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष और अंश साहू। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है महाराष्ट्र से श्रीराम गोंदली, उषा, वैष्णवी, पूनम, युवराज ने। सुन रहे कार्यक्रम को, हमारे कार्यक्रम सुन रहे सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत। दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। श्रीमती शोभा के शरद, पीपी विदेही, विहान, आप सभी मंचला रेडियो लिसनर्स क्लब अकोला से हमसे जुड़ रहे हैं। जाहिद अली, मोहम्मद SS अली, मोहम्मद शाहिद अली, अशोक, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका एंड सानिका श्रीरामपुर के ये श्रोता हैं। अगले श्रोता पुनावली से हैं, अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा। हमसे जुड़े सभी श्रोताओं का अभिनंदन। किशन, आशा, सानिया एंड विशाल बीर शहर से हमसे जुड़ रहे हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है संजय, उषा, निवृत्ति, संजय मलकापुर से। स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज एंड शुभदीप, आप सभी फिरोजपुर पंजाब से कार्यक्रम सुन रहे हैं। सौरव, प्रकाश, बल्लू एंड श्रीनिजा छत्तीसगढ़ के श्रोता। वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमी, ममता रानी, पूनम कुमारी, अकरम हुसैन प्रिंस, आप सभी सीतामढ़ी से जुड़ रहे हैं। अनिल, उषा, टिल्लू एंड मधु पहाड़गंज, मुल्तानी, डाणा से हमसे जुड़ चुके हैं। नारायण, कमल, दिव्या, जय, आप सभी बुलडाणा के श्रोता हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। हरिद्वार उत्तराखंड से, उत्तम नगर दिल्ली से जुड़ चुके हैं बोधराज, कमला रानी, गीतिका एंड भानु प्रकाश। वनस्थलीपुरम हैदराबाद से हैं दोनाला श्रीमती रेणुका और संध्या, साई कृपा, समस्त परिवार, दिलदार, ज्योति एंड दीक्षांत, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। फुटानी चौक नहन स्टेट से ललन मिश्रा नूतन, अमन परासर, बीर बी आराध्या और लल्लू पंडित, राहुल, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और बेबी प्रियांशी शाहूनगर यवतमाल से हमसे जुड़े हैं।

आज हमारा जो विषय हम जोड़ रहे हैं वो है बुजुर्ग, हमारी धरोहर। जी हाँ साथियों, आप भी अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं 9412225575 पर अपने संदेशों के द्वारा। हमारे बुजुर्ग हमारे समाज और परिवार की वह धरोहर है जो

में अपने अनुभव, ज्ञान और संस्कारों से समृद्ध करते हैं। वे हमारे अतीत के सजीव दस्तावेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और उपलब्धियों से हमें ये सिखाया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। बुजुर्गों का महत्व केवल उनकी उम्र से नहीं, बल्कि उनके अनुभवों से होता है, उनके मार्गदर्शन से होता है। उनके बिना हमारा जीवन या फिर परिवार बिल्कुल अधूरा लगता है। संदेशों को जोड़ते हैं मास्टर विठल, सुषमा, परिधि और मायरा। आप सभी महाराष्ट्र से हमसे जुड़ रहे हैं। कमल बालूजा, मधु, सागर, उमंग और आकांक्षा, माही मलिक, आप मजनू का टिल्ला से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, सभी श्रोता बंधुओं का कार्यक्रम में बहुत स्वागत। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेहंदी, सौरभ शर्मा और सायना शर्मा, इनके साथ निवान शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। सुशीला देवी, सदानंद कुमार, गौरव, आप सभी अकोला से कार्यक्रम सुन रहे हैं। बब्बल मल्होत्रा एंड ओम प्रकाश मल्होत्रा हमसे जुड़े हैं पंजाब से। आइए सुने आप सभी की पसंद का ये सदाबहार गीत।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने विषय को लेकर। विषय है बुजुर्ग। जी हाँ, हमारे बुजुर्ग याद आती है उनकी। आपको शायद याद होगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं लगभग गांव में रहते हैं और आज भी चौपाल पर अखबार को पढ़ते हुए बुजुर्ग दिखते हैं, मंदिर की ओर जाते हुए बुजुर्ग दिखते हैं, खेतों में अनुभव बांटते दादा और दादी, और साथ में बच्चों को सुनाती हुई कहानियां उनकी नानियां, समाज की एक जीवंत तस्वीर पेश करती है। जी हाँ साथियों, बुजुर्ग ही तो है हमारे बिल्कुल वट वृक्ष जैसे। कार्यक्रम में आगे हम नाम जोड़ लेते हैं। गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय प्रांजल राय का, और बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। मधुबनी एक्सटेंशन से हमसे जुड़ चुकी हैं फूलों देवी, स्वर्णिमा, श्वेता, रागनी, चुलबुल, रंगोली और रुद्रहा। इसी के साथ अगला संदेश हमसे जुड़ रहा है ग्राम पंजौनिया से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक, अलौकिक का। समस्तीपुर बिहार से जुड़े हैं कारी राय, कारी मीना, कारी पुंजराज, आरती, आकर्षण, जयश्री, मोहम्मद कलीम जख्मी, भवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबिरुल बेगम, शबनम, नजमा बेगम और सरिता गौतम हमसे गंज डुंडवारा से जुड़ चुके हैं। कानूगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश, आप सभी तेलंगाना के श्रोता, वैष्णवी, जानवी, भारती, प्रकाश, बंगाली पंजा नागपुर से हैं, दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़ रहे हैं, मुकेश, मधु, आशी, शिवान्या छत्तीसगढ़ के श्रोता, छत्तीसगढ़ से फनीश, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र और हेयांश, कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर एंड विजय लक्ष्मी, किशनगंज बिहार से जुड़ चुके हैं रविंद्र, आशा, भानुप्रिया, कीर्ति, भारती, देवाश्री, माधुरी, सुशांत, चुलबुल, ज्योति, नवीन मधुबनी बिहार से हमसे जुड़ रहे हैं, रमेश, मोहिनी, कल्पित, बेबी करवी, बेबी को हिमांश जोधपुर राजस्थान से, नारायण, दयानंद, ओमकार और साईं नांदेड़ से अपना संदेश हम तक भेज रहे हैं, राजेश, सुरेखा, शुभम, अक्षय खंडवा से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल, पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता रानी, जिंदल, पप्पू महक, सुनीता, आरजू, हसमुखलाल, बुलबुल, संजीव, बंटी, पूरा ही खुशदिल परिवार पंजाब से, साधना, किशोर अमरावती से कार्यक्रम सुन रहे हैं, आर्यन, रोहित, पीयूष आप सभी बिहार से हमसे जुड़ चुके हैं। अगला मैसेज सिद्धार्थ, अर्चना ताई, हीरामन, प्रणय, प्रतिभा, आपका बहुत बहुत स्वागत महाराष्ट्र से। उत्तम नगर दिल्ली से संदेश लिख भेजा है गीतिका, भोदराज, कमला और भानु। अगला संदेश हमसे जुड़ चुका है मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं पटियाला से। अंजय, अजय, करिश्मा, अविका एंड साइशा, आप सभी पुनावाले से, डी अशोक कुंबार, अविका, सानू और अर्चना, आप सभी श्रीरामपुर से हमसे जुड़ चुके हैं। जयपाल यादव, राघवेंद्र, रागिनी,

दिव्यांशी बुंदेलखंड यूपी से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास रानी, आप सभी छत्तीसगढ़ के श्रोता, सोनू भोजनी, वसंतराव एंड जिंगाव, आप सभी महाराष्ट्र से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। गजानंद मारुतराव महाराष्ट्र के श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। सालर पहलगाम से हैं परजादा मिराज उद्दीन। मुंगीसापुर से जुड़ चुके हैं मोहम्मद जाकिर मंजूरी, कमरों निशा, शाबिस्ता मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंजूरी। बलवीर मोहिनी लक्ष्य मानवी काजल राज्यपाल सोनू शीतल और मुकेश ग्राम दुल्हापुर से कार्यक्रम सुन रहे हैं। रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान हमसे जुड़ चुके हैं राजस्थान से। अगला संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रज्ञेश एंड प्रीतेश, पूरा ही संगई परिवार। आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में बुजुर्गों की। जी हाँ साथियों, बुजुर्ग केवल एक आयु वर्ग नहीं बल्कि अनुभव, परंपराओं और संस्कारों की जीवित विरासत है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें आदर दें, उनसे सीखें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातें करें। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और जो हमें आगे जीवन में काम आएंगी, वो सब बातें हमारे बुजुर्ग ही तो हमसे शेयर करेंगे। कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में अगला संदेश शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और आजमा खातून अंसारी, जो कि बिहार से हमसे जुड़े हैं, डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नाना, डोंगर दीवे, रमाताई, दीक्षा, रीमा, राहुल, आप सभी नागपुर के श्रोता हैं। इसी के साथ जुड़ चुके हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवेम जैन, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं मलियान सरदना मेरठ से। उस्मान शेख फौजी, सैरबानू, बाबा शेख, सिमर और करिश्मा हमसे लातूर से जुड़ रहे हैं। अगला संदेश निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहाना जान, अमान और पूरा बासी परिवार हम तक पहुंचा रहा है बुलंदशहर से। राजस्थान से दातार सिंह, संगीता, तुषार, रिंकी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। राजस्थान से जुड़ रहे हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, जयराम, दिशांत और अर्पिता यवतमाल से, रामगढ़ कैंट से महेंद्र, कुलदीप, बेंगलुरु से भारत भूषण, जो श्रीवास्तव, दिव्येंदु, संस्कृति पौरुष, आप सभी का स्वागत कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के श्रोता विश्वनाथ, पंकज, तिरुपति और कुंती, देवयानी और गणेश कामले महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ की श्रोता हैं दुर्गेश और निर्मला, ग्राम सुखरी कला से जुड़ रहे हैं अमित, शकुन, आरुषि, आदित्य और अंजलि, भारत, अंजू, दिव्यांशु, संस्कृति पौरुष, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, गुरुमंत, मन्नू, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सुखविंदर, सीटी दीवाना, आप सभी दिल्ली के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। गजानंद, कविता, धीरज, श्री वालोकार महाराष्ट्र के श्रोता, डैनी पवार, मनीष पवार हमसे बाड़मेर से जुड़ रहे हैं, निखिल कांगड़ा, तन्वी, अंकित, बबीता, सीताराम, आप सभी रोहतक के श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ से दुखी राम यादव, स्नेहलता और कौशल्या, इसी के साथ गुजरात से रश्मि, झरना और भरत कुमार, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी और गुड़िया बानो, एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा, सरफराज, गुलफराज एंड बेबी मुस्कान, एटा उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़ रहे हैं, सुरेंदर, अनीता, रोहित, रीति

प्रीतिशा, सुरेश, बेबी, ग्रोवर और मैक्स, आप सभी पंजाब के श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। प्रभा और अशोक, आप सभी जालंधर के श्रोता। इसी के साथ अगला संदेश कोलगांव से पांडु, उषा, रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग का है। राजस्थान से जुड़ चुके हैं नीलू, नीलम, नवीन, सुरेश, विंटी, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह एवं प्यारी प्यारी कोकोरानी, आप सभी वाराणसी से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर, करण, राहुल साहू, चंपा साहू, कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है छत्तीसगढ़ से कमलकांत, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ ने। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

धानोरा विटाली तहसील नांदूरा से हमसे जुड़े हैं भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल। तेलंगाना से कस्तूरी उमा देवी, पृथ्वी नारायणा। सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश, आप सभी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़ रहे हैं हरियाणा से। उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं विनोद, नेहा, दीपक, चेतन, आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं मन्नत, भरत,

0: मल, पिंगा वाला चौक, जालंधर से। योगेश, सिमरन, मीरा, महादेव पारा से। दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री कुरुक्षेत्र से। इसी के साथ गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुत है ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ढोला गायन। प्रसंग है धर्म के मामा सेठ की जेल, राजा नल का भय माता से मिलन। कलाकार हैं विशन सिंह गुर्जर और उनके साथी बिशन सिंह गुर्जर, राम कन्हैया, राम अवतार, दम्मू सिंह और शिवराम। तो आइए सुनते हैं ढोला गायन।

मेरे प्रिय बंधुओं, आज का प्रसंग है ढोला गायन के माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं धर्म के नाना मामान की जेल, नल बहमाता से मिलन। ये हम ढोला प्रसंग में गा रहे हैं, आप सुनेगा। जय जय श्री राधे।

ठोक रही चली गई और सेटल के लिए वोट मिल गई। लाला क्या हुआ? अरे पाई गई वोट खुशी भैया बनिया और जहाज दिए बगदाई और प्रथम

राजा प्रथम बोले हो नग ही राम से जड़ी हुई है। खुश करने के लिए नग ही राम से गोट को जड़ी हुई बुलाए हो, पर सुन लियो वचन हमारो। अरे के तो

पुरुष करने के लिए तुम इस गोट को लाए हो, लेकिन छत्री राजा है, 16 गोटों से खेलते हैं, तुम एक गोट को लाए हो। सुनो,

लोगो तो मेरे लोगो जेल छुड़ा नहीं है जा करके और 6 महीना का वायदा कर दिया है और बोट ढूंढने के लिए समुद्र के किनारे

और मैया ने बतराई। अरे मेरे बेटा ने नन्ने खोल के मेरे दर्शन कर ले, सुर्गे आ गई है। नेत्र खोल के दर्शन कर ले, नल से मैया बतराई।

बोलो मैया दरवाजो तो है ना, काहे के घुसमो कैसे बतरा मोतनी से। तो देवी मैया बता रही है लाला किस तरह से।

0: दिन भरनी है।
1: कल
0: बोलो भैया सोमन को पत्थर वो पे ना हटे वो ऑर्डर लांगुर दे दियो। लांगुर जा मेरे भगत की रक्षा कर, मेरे भगत के काज सार। तो लांगुर आयो दरवाजे पे सिकंदर पटिया हटवारो। बेटे झूठे को तू पैर लगा दे, ठोकर मार दे पटिया में। ये

बिछा करके खेल खेल रही है। नल बोलो जिन गोटन के ऊपर बनियान की जेल है रही, वो तो गोटिया गटबोतनी की है। नल बोलो जय हो जय रो, मेरे नल मामल की जेल छूट गई, पर 16 गोटन से हम लोग खेलते हैं, ये 15 गोटे मारा समंदर पर नहावे गई, भूले आई समंदर पर पाई ना। नल बोलो परिया गजब की चोट।

0: क्या हुआ है? नल बोलो एक काम करो, तेरो पिता कैसे मरेगो बहवा का मैया ने न्यू बताइए के घूमा सुरदार मार करके मोतनी का विवाह होगा, इसलिए तेरो बाप कैसे मरेगो वो कुन्यो बता दे
1: और कहा काम करो तेरो।

खंड में एक मलिया घर को पेड़ है जिसको खतरक्ष का पेड़ बोलते हैं, उसमें बुगनी का पिंजरा लटक रहा है। कोई बुगनी के पिंजरा है तोड़ के बुगनिया नीचे पटक दे, बुगनी की नार है तोड़ दे, तो मेरे पिता मर सके।

जैसे ही नार मुगली की तोड़ी, उमा सुल्ताने का शीश कट के अलग हो गया, उमा सुल्तान मर गयो। मोत्री बोली, इस चौकन में परो मेरो बाबा, मरो मत समझे, सांस चल रहे हैं।

पे ते मारूं, महाराज मोतनी को छज्जे पे ते मार दूंगी, तुम पे विपदा पड़ेगी, देनी के यहाँ और नौकरी करोगे, लाठ हाँकोगे, गोलू में चलाओगे, क्या बोले।

ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ढोला गायन, कलाकार थे विशन सिंह गुर्जर और साथ ही इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे ख्याल गायन राग मारवा में। कलाकार होंगे पंडित जसराज। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10 से। इस कार्यक्रम में सुनेगा भजन व गीत। कलाकार होंगे तरुण कृष्णदास और वंदना तेलंग।

किसान भाई और बहनों के लिए ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:50। इस कार्यक्रम में आज की वार्ता का विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनका निदान। जानकारी देंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार।

ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 6:15 से। इस कार्यक्रम में सुनिएगा उमेश चंद्र शर्मा की लिखी कहानी चतुर नारी को बलमा। बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग दोपहर 1:15 से। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस और स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें। इसी के साथ विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सावन आया रे, प्रस्तुति अनुपमा श्रीवास्तव की रहेगी। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कहानी कामयाबी मिल ही जाती है, प्रस्तुति अरुण कुमार और शारका शेख की रहेगी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग दोपहर 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा, संध्या 7:31। नवरंग यह कार्यक्रम 9:15 पर आप सुन सकेंगे। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा, संध्या 7:31।

अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन शब्दों के साथ मैं अपने सभी श्रोता बहनों का स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम वनिता लोक में। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी सुन रहे हैं जया आर्य को। श्रोताओं, आज विश्व के सामने आतंकवाद उपस्थित सबसे बड़ी गंभीर समस्याओं में से एक है। ये केवल किसी एक देश या समाज की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चुनौती है। आतंकवाद का उद्देश्य भय और हिंसा फैलाकर लोगों तथा समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करना होता है। इसके कारण निर्दोष लोगों की जान जाती है, परिवार उजड़ते हैं और देश की शांति एवं विकास प्रभावित होते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस हमें आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होने और शांति, मानवता तथा भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश है। इस अवसर पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आतंकवाद किसी धर्म, जाति या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आतंकवाद केवल हिंसा और भय की विचारधारा है जिसका विरोध हर शांतिप्रिय नागरिक को करना चाहिए। आतंकवाद के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कट्टरपंथ, गलत विचारधाराओं का प्रचार, असामाजिक तत्वों का प्रभाव और युवाओं को भ्रमित करना। इसलिए आतंकवाद को रोकने के लिए केवल सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि शिक्षा और जागरूकता भी आवश्यक है। युवाओं को सही दिशा, सकारात्मक सोच और मानव मूल्यों से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, स्कूल और समाज भी आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यार्थियों को शांति, एकता, सहिष्णुता और देशभक्ति के मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। हमें अफवाहों और नफरत फैलाने वाली बातों से बचना चाहिए तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए। अंततः मैं सभी श्रोताओं से यही कहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस हमें ये संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम हिंसा और नफरत के बजाय शांति और मानवता का रास्ता अपनाएंगे। एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण केवल सरकारों की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्रोताओं, आतंकवाद का अंत तभी संभव है जब हम नफरत के विरुद्ध एकजुट होकर शांति और मानवता का साथ दें।

श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है, स्वच्छता है जहां, स्वास्थ्य है वहां। स्वच्छ वातावरण न केवल हमें बीमारियों से बचाता है, बल्कि हमारे मन और विचारों को भी सकारात्मक बनाता है। इसलिए हमें अपने घर, विद्यालय, आसपास के वातावरण और सार्वजनिक स्थानों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। आज के समय में बढ़ता प्रदूषण, कूड़ा कचरा और गंदगी हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। गंदगी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। यदि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और स्वच्छ पानी का प्रयोग करें, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। विद्यालय में विद्यार्थियों को अपने कक्षा कक्ष, डेस्क और आसपास की जगह साफ रखनी चाहिए। हमें भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने, साफ पानी पीने और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने की आदत बनानी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के साथ साथ पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और अच्छी आदतें भी आवश्यक हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार, विद्यालय और समाज के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकता है। तो श्रोताओं, आज हम सभी ये संकल्प लें कि ना ही गंदगी करेंगे और ना ही गंदगी करने देंगे। हम इसकी शुरुआत अपने घर से करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। स्वच्छता अपनाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और अपने देश को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं।

सावन प्रेम का महीना है, गायन का महीना है। धरती पर शायद ही कोई कोना होगा जहां सावन में गायन न होता हो। सावन के लिए कान ही नहीं, आंख भी चाहिए। सावन को सुनिए भी, देखिए भी। सावन साहित्य का भी चहेता है। तुलसीदास का प्रेम था सावन से। सावन में ही पैदा हुए, सावन में ही घर छोड़ा। सावन की उफनती नदी में शव की नाव पर तैरे, सांप की रस्सी पर चढ़े और सावन में ही राम के हो गए। सावन न होता तो वो अमर राम काव्य भी न होता जिसे तुलसी ने मस्जिद की गोद में बैठकर रच डाला। गजब का मौसम है ये, इसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी रुला डाला। सावन की अगन में राम भी कह उठे, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा। सावन में ही सीता के अंक में लव और कुश आए। सावन में ही झूले का आनंद लेते हुए कृष्ण ने राधा से कहा, हे राधिके आराधिके, मैं जहां भी रहूं तू मेरे साथ रहेगी। यदि कालिदास का यक्ष आतुर न होता तो वो भी अपना संदेशा सावन में ही भेजता। खैर, लोकमानस में तो संदेशा भेजने का मौसम सावन ही है। बहन को, बेटी को, ननद को संदेशा यही मौसम लाता है।

गर्मी जितना जलाती है सावन उतना ही भिगोता है, तन ही नहीं मन भी। धानी चूनर ओढ़े धरती हंसती है, आसमान उसे अंक में समेटने रह रह कर नीचे आ जाता है। सावन हरियाली ही नहीं लाली भी लाता है। गोरी अपने नायक से कहती है, पिया मेहंदी मगाए दे मोती झील से, ए जी कोई रचे हाथ संग गात।

से ए जी कोई रचे हाथ संगगात। सावन में मेहंदी शुभ है, श्रृंगार है, प्रकृति हरी मन हरा, तन पर वस्त्र भी हरा हरा, और हाथ में मेहंदी भी हरी, और तो और हरियल बाग में झूला भी हरियल। चकिया पीसती, मठा बिलोती, धान कूटती, आंगन बुहारती, लोक नायिकाओं के कंठ से फूटे ये गीत मन को छू लेते हैं।

पर झूलती सखियां जब प्रेम नायिका चन्ना की कहानी गाती हैं, तो आंखों से भी सावन बरसने लगता है। फूल सी कोमल थी चन्ना और पानी सा कोरा था उसका मन। पहली ही नजर में उसे समला सुनार से प्रेम हो गया। उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही थी, जिसे उसने प्रेम किया वो उसका नहीं हो सकता था, और जिसके साथ उसका ब्याह कर दिया गया उसकी वो कभी हो नहीं पाई। लोक परंपराओं के हनन का अधिकार किसी को भी नहीं होता, राजा की बेटी चंदना को भी नहीं। तीज का दिन ब्रज में हर नारी के लिए हर्ष और आनंद का पर्याय बनकर आता है, लेकिन चंदना के लिए ये दिन आंसुओं और बदनामी का उपहार लेकर आया। सारे नगर में एक ही चर्चा थी, बाल विवाहिता चंदना का समला

शोक निंदा से भयभीत रानी ने राजा से चंदना को ससुराल भेज देने को कहा। सामाजिक प्रतिष्ठा के मिथक को बनाए रखने के लिए चंदना के निश्चल प्रेम को परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ना ही था। चंदना की ससुराल कोने की पाती भेज दी गई। चंदना को ससुराल भेजने की तैयारियां होने लगीं।

पल झपकते चंदना के पति कुंवर जी की सवारी आ पहुंची, आप भगत होने लगी। जाने कितनी तरह के पकवान बनाए गए, लपझपी पूड़ियां, हरी मुगोड़ी, धोबा दाल, घी बूरा। इधर कुंवर जी का स्वागत हो रहा था, उधर चंदना की बेचैनी बढ़ रही थी। प्रेम की प्रबलता किसी के रोके ना रुकी, बरसते मौसम अंधेरी रात की परवाह न करके चंदना चल पड़ी अपने प्रिय समला सुनार से मिलने, शायद आखिरी बार। भोर से पहले चंदना घर लौट आई। आज पीहर में चंदना का आखिरी दिन था, धीरे धीरे कोने की घड़ी भी आ गई। चंदना फूट फूट कर रो दी, उसके प्रेम की पीर मानो आंसुओं में घुलकर बह जाना चाहती थी।

चन्ना को डोली में बिठाकर कुंवर जी लौट चले। रास्ते में हरियल बाग आया। कुंवर जी ने डोली रुकवाई, चन्ना से पूछा, ओ चंदा सी चांदनी, तेरी माँ और बाबा ने तुझे इतने उपहार दिए, लेकिन ये नहीं बताएगी कि तेरे समला सुनार ने तुझे क्या दिया। चंदना, पत्ते पर ठहरी बूंद सी कांप उठी। कुंवर जी बोले, जिस सुराहीदार गर्दन में तूने उसका नौलखा हार पहना है, उस गर्दन के लिए मैं भी तो एक उपहार लाया हूं। कमर से कटार खींचकर कुंवर जी ने एक पल में चन्ना की गर्दन में घोंप दी। धानी चूनर लाल हो गई। प्रेम प्रतिष्ठा की बलि वेदी पर चन्ना की बलि चढ़ा दी गई। ससुराल वाले कहते, चंदना मायके में है, और मायके वाले कहते कि चंदना ससुराल में है। और ये सच केवल हरियल बाग जानता था कि चन्ना उसकी गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो

गई है। आज भी सावन की झड़ियों के साथ जब झूले आसमान को छूने बढ़ते हैं तो कोकिल कंठों का अमृत पाकर चन्ना फिर जी उठती है। जरा सी देर में सबको भिगो गया सावन, किसी की आंख के आंसू को रो गया सावन, कहीं पे बाग के झूलों की मौज मस्ती में किसी की आंख के काजल को खो गया सावन। दिलो दिमाग से लोगों के इस परस यारो, मुझे यकीन है नफरत को धो गया सावन।

कार्यक्रम में बहनों ने सुना अनुपमा श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया श्रावण मास पर विशेष कार्यक्रम, शीर्षक था सावन आया रे। आशा करते हैं आज का कार्यक्रम का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अब अपनी सखी को अनुमति दीजिए, अगली बार पुनः हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सोनू निगम, सुनिधि चौहान को अभी आपने सुना फिल्म फना में।

कुमार सानू अलका याग्निक को भी आपने सुना फिल्म गुलाम में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
2: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।

0: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
2: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडेम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है NCERT CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओ, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं, प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ,

0: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं, प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
0: नर्मदानगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
1: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
0: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
1: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
0: जी
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
0: जी
1: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
0: बिल्कुल।
1: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
0: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं। ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
1: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
0: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
1: जी।
0: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
1: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
0: जी।
1: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
0: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
1: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
0: जी।
1: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
0: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
1: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
0: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ? क्या बाज कभी उड़ पाया?
1: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
0: जी।
1: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
0: जी।
1: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
0: जी।
1: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
0: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओ, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
1: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
0: जी।
1: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
0: जी।
1: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
0: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
1: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
0: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
1: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं।

0: हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
1: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
0: तो हम कहना चाहते हैं,
1: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
0: आप हैं।
1: बिल्कुल।
0: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं। यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं,
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
1: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
0: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।

0: मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी, क्यों?
1: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
5: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
6: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
1: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने

0: देखने योग्य नहीं है, है ना चुनरू जी?
1: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
2: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: जैसे?
0: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
1: बताओ।
0: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
1: ठीक है।
0: बताओ।
2: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
0: और
2: यदि बंद ना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ, बहुत अच्छे।
1: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
2: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
1: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
2: मेरे पास
3: बहुत बड़ी पैसे।
1: वाह,
0: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना? है ना? है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
2: जल।
1: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
0: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
1: तो,
0: चलिए
1: शुरू हो जाओ।
0: बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
1: हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो, अब तुम्हारी बारी है।
2: जीवन सुखद बनाएंगे।
0: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के

0: जी मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
1: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
0: आज तीसरा फाका है। शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
1: या खुदा,
0: नौश फरमाइए मियां।
1: लाइए
0: खाइए।
2: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
3: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
4: लिख दिया।
0: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाएं।
5: इरशाद ग्रामी
0: है मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
1: वाह क्या बात है। है मश्के सुखन जारी,
6: चक्की की मशक्कत भी।
1: वाह
0: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
1: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या बात क्या बात।
3: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
1: आजना, क्या खूब गजल कहते हैं आप।
6: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
1: मोहानी साहब, आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
0: जी नहीं नहीं नहीं, नहीं।
6: मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
0: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। हाँ? नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
1: क्या
0: जी? एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
6: अरे मान साहब,
0: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब। चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
1: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
0: नहीं नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
6: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
0: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
1: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
3: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
1: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
6: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
1: आपने तो कुछ खाया ही नहीं।
6: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
1: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।

0: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
1: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
0: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, शब्बा खैर।
0: शब्बा खैर।
2: बला की ठंड है,
0: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है।
2: नहीं नहीं
0: नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है, और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए।
3: अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
4: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
0: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का। बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयाते जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
4: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 MHz पर। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 5:30 हो चुके हैं। इस मीटर पर प्रसारण अब समाप्त होते हैं, आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के साथ में हूं आपका रेडियो दोस्त अरविंद कुमार। श्रोताओ, साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने का सशक्त माध्यम भी है। हिंदी उर्दू साहित्य की चर्चित लेखिका इस्मत चुगताई ने अपने बेबाक लेखनी से आर्य समाज में मौजूद रूढ़ियों, असमानताओं और विशेषकर स्त्री जीवन से जुड़े प्रश्नों को मुखरता से उठाया। आज की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे साहित्यकार इस्मत चुगताई की जयंती के अवसर पर लेखिका इस्मत चुगताई के बारे में। आज

कि दिन यानी 31 अगस्त 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में जन्मे इस्मत चुगताई ने उर्दू कथा साहित्य को नई दृष्टि दी। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जीवन, स्त्री की आकांक्षाएं, सामाजिक बंधन और मानवीय रिश्तों की जटिलताएं प्रभावी ढंग से सामने आती हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी लिहाफ ने साहित्य जगत में व्यापक चर्चा पैदा की। इस्मत चुगताई की विशेषता थी सच को बिना लाग लपेट के कहना। उनकी लेखनी ने पाठकों को केवल कहानी नहीं सुनाई बल्कि समाज के उन पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर किया जिन पर अक्सर बात करने से लोग कतराते हैं। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें स्मरण करते हुए यह भी समझ रहे हैं कि

करते हुए यह भी समझ रहे हैं कि साहित्य की सार्थकता तभी है जब वो मनुष्य को अधिक संवेदनशील, विवेकशील और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाए। आज की बात के क्रम में ही अब हम बात कर रहे हैं आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। दोस्तों, हर वर्ष 21 अगस्त को यह दिवस उन लोगों की स्मृति को समर्पित किया जाता है जो आतंकवादी हमलों के कारण अपने जीवन, अपने प्रियजनों या अपने भविष्य से वंचित हुए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद केवल किसी एक व्यक्ति या देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। आतंक की हिंसा अपने पीछे केवल तबाही नहीं छोड़ती, वो परिवारों के जीवन में गहरे घाव, भय और असुरक्षा की भावनाएं भी जोड़ जाती हैं। इसलिए आतंकवाद के पीड़ितों को याद करना केवल श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों, गरिमा और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करना भी है। दोस्तों, ये दिवस हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हिंसा का उत्तर मानवता, शांति और एकजुटता से दिया जाना चाहिए। समाज में संवाद, सहिष्णुता और परस्पर सम्मान की भावना मजबूत करके ही आतंकवाद और कट्टरता के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कमजोर किया जा सकता है। तो आज की बात से दोस्तों ये सीख मिली, एक ओर इस्मत चुगताई की निर्भीक लेखनी हमें सच बोलने और सामाजिक रूढ़ियों पर प्रश्न उठाने की प्रेरणा देती है, तो दूसरी ओर आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति में हमें मानव जीवन के मूल्य, शांति और सह अस्तित्व का महत्व समझाती है। आइए आज हम संकल्प लें, शब्दों में संवेदना, विचारों में विवेक और व्यवहार में मानवता को स्थान देंगे।

0: जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ों में डेली सिक्स फिल्म का यह गीत आपने सुना। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी कामयाबी मिल ही जाती है। प्रस्तुति अरुण कुमार और शारुख शेख की है।
1: कामयाबी मिल ही जाती है। सावन का महीना चल रहा था। बिजली की कड़कती आवाज और तेज बारिश का मौसम अपने आप में एक माहौल को खुशनुमा बना रहा था और उस पर रोहन के हाथ के बने चटपटे और स्वादिष्ट पकौड़ों का मजा सारे घर को महका रहा था। भैया, पकौड़े तो बहुत मजेदार बने हैं। गर्मा गर्म पकौड़ों को खाते हुए रश्मि भाई की तारीफ कर रही थी। सभी घर वाले मौसम और पकौड़ों का मजा ले रहे थे। अचानक ही बुआ की तेज और गुस्सेदार आवाज से सारे घर में सन्नाटा छा गया। घर में औरतों की कमी थी क्या जो आदमी रसोई में खड़े होकर खाना बनाएंगे? बुआ के तंज भरे अल्फाजों में रोहन को अपने सपने बिखरते हुए नजर आते थे। रोहन अपने घर में एक बहन और भाई से बड़ा था। उसने इंजीनियरिंग की हुई थी लेकिन उसका मन खाना बनाने, नई नई डिशेज बनाने में और एक कामयाब शेफ बनने का था। उसका बचपन से ही खाना बनाने में और माँ का रसोई में हाथ बटाने में पूरा सहयोग होता था। माँ और उसकी बहन रश्मि रोहन को पूरा सपोर्ट भी करती थी। पिताजी और बुआ रोहन के इस काम के लिए हमेशा उसे डांटा करते थे और बुआ उसे ताने दिया करती थी, लेकिन फिर भी रोहन अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ भूलकर मां के साथ किचन में नई डिशेज बनाने में लग जाता था।

धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और रोहन खाना बनाने और तरह तरह के लजीज पकवानों को बनाने में काफी एक्सपर्ट हो चुका था। एक दिन रश्मि की दोस्त के यहाँ सगाई का फंक्शन था, जहाँ रोहन रश्मि को उसके फ्रेंड के घर ड्रॉप करने गया। जब ये लोग वहाँ पहुंचे तो सभी लोग फंक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। चारों तरफ लाइटों से जगमगाता गार्डन, मेहमानों के आने का शोर था। रोहन रश्मि को उसकी दोस्त के पास ड्रॉप करके जैसे ही बाहर आया तो उसकी नजर बाहर बने एक पंडाल की तरफ गई, जहां रश्मि की दोस्त संजना के मम्मी पापा टेंशन में इधर उधर घूमते हुए दिखाई दिए। रोहन सोच में पड़ गया कि ऐसी क्या परेशानी है जो आंटी अंकल इस खुशी के माहौल में इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ समय सोचने के बाद कदम बढ़ाते हुए उनके पास पहुंचा। समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहूं और कैसे पूछूं कि वो लोग परेशान क्यों हैं। हिम्मत करके रोहन ने सवाल किया, अंकल क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? संजना के मम्मी पापा रोहन को नहीं जानते थे, इसलिए अपनी परेशानी को बताना, वो भी किसी अनजान शख्स से, उनको जरूरी नहीं लगा और कुछ नहीं बोलकर दोनों आपस में बातें करने लगे। रोहन से उनकी परेशानी देखी नहीं गई और उसने दोबारा कहा, आंटी आप लोग क्यों परेशान हैं मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। फिर संजना की मम्मी ने बताया कि बेटा फंक्शन शुरू होने वाला है, सारे मेहमान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन खाना बनाने वाले की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसने आने से मना कर दिया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि इतने कम समय में कहां से इंतजाम किया जाए, कोई भी आने को तैयार भी नहीं है। रोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उतर आई। उसके लिए भगवान का दिया हुआ वो मौका था जो उसे पूरी तरह उसके सपनों को पूरा करने के लिए मिला था। उसने कहा, आंटी अंकल अगर आप ठीक समझें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, लेकिन इस वक्त उनके पास रोहन की बात मानने के अलावा और कोई भी रास्ता न था। उन्होंने हाँ कर दिया। रोहन को खुशी हुई कि उन्होंने उस पर भरोसा करके उसे ये मौका दिया। तभी वो दोनों अंदर चले गए और रोहन अपने काम में लग गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद सगाई का फंक्शन शुरू हुआ। हर तरफ खुशी का माहौल और धूम हो रही थी। फिर खाने का समय भी आ गया। रोहन ने वक्त से सब काम पूरा कर दिया और सभी लोगों ने खाना शुरू कर दिया। संजना के मम्मी पापा इसी फिक्र में थे कि मेहमानों के सामने इज्जत बनी रहे, और हुआ भी यही। फंक्शन में आए हरेक शख्स ने खाने की तारीफ की और सभी ने बड़े खुश होकर हरेक डिश का स्वाद लिया। फंक्शन खत्म होने के बाद संजना के मम्मी पापा ने रोहन का बहुत शुक्र अदा किया, बेटा आज तुमने हमारी इज्जत रख ली और इतना अच्छा खाना बनाया कि सभी लोग तारीफ कर रहे थे।

0: इश्क है।
1: जब ये बात रश्मि को पता लगी तो उसे बहुत खुशी हुई और अपने भाई की तारीफें करने लगी। इस फंक्शन के बाद रोहन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो अब कंपटीशन के लिए तैयार हो चुका है। वो दोनों घर पहुंचते हैं और घर जाते ही रश्मि खुशी से माँ को सारी बात बताती है। माँ को भी रोहन की इस बात से बहुत खुशी हुई, वो उसे शाबाशी देने लगी। तभी अचानक बुआ जी सारी बात सुन लेती हैं और शुरू हो जाते हैं उनके वही ताने। अब यही कसर रह गई थी, रसोईया हलवाई बनेगा, बाप की सारी मेहनत को चूल्हे में जलाएगा। बुआ की बातों ने रोहन के अरमानों पर फिर से अंधेरा फैला दिया था। रोहन दुखी मन से अपने कमरे में चला गया। वक्त बीतने लगा, पिताजी रोहन पर जॉब के लिए जोर डालने लगे। उसके लिए किसी अच्छी कंपनी का ऑफर लेकर आए जिसके लिए उसे विदेश जाना होगा। लेकिन रोहन अपने घर से दूर जाकर नहीं रहना चाहता था, वो अपनी खुशी से अपनी फील्ड में नाम कमाना चाहता था। लेकिन पिताजी की जिद और गुस्से के आगे वो कुछ कह ना सका और उनके जोर देने पर उसने जॉब के लिए हाँ कर दी। एक दिन अचानक रश्मि कॉलेज से घर आई और सीधे रोहन के पास भागती हुई पहुंची। भाई तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। उसके हाथ में नेशनल किचन शेफ कंपटीशन का फॉर्म था। भाई जल्दी से इसे भरो और अपने सपनों को हकीकत में बदल दो। रोहन समझ नहीं पाया क्योंकि वो जॉब के लिए बाहर जाने की वजह से परेशान था। रश्मि ने रोहन के हाथ में फॉर्म देते हुए कहा, भाई तुम्हारे लिए शायद ये वो मौका है जिसका तुम्हें कब से इंतजार था। रोहन ने फॉर्म को हाथ में लिया, उसे अपने सपने आंखों के सामने चमकते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वो पिताजी से वादा कर चुका था, उसने रश्मि को मना कर दिया कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। तभी कमरे में माँ आ पहुंचती है। वो रोहन को उदास देखकर कहती हैं, बेटा जीवन में आई कामयाबी के मौके को गंवाना नहीं चाहिए, तुम फॉर्म भरो और तैयारी करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करके उन्हें समझा लूंगी। मम्मी की इस बात से रोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई थी।

जिस दिन रोहन की विदेश के लिए फ्लाइट थी उसी दिन उसे नेशनल किचन शेफ कंपटीशन के लिए दिल्ली जाना था। माँ का आशीर्वाद लेकर रोहन जाने के लिए तैयार हुआ, तभी बुआ जी फिर से एक बार उसके सपनों को तोड़ने के लिए ऐसे शब्द कहने लगी जो आज माँ को भी अच्छे नहीं लगे। उनसे रहा ना गया और उन्होंने बुआ जी को कहा, बच्चों की खुशी में खुश होने से, उन्हें बढ़ावा देने से बड़े होने का एहसास होता है। हमें बच्चों को कामयाब होने के लिए आशीर्वाद देना चाहिए, उन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए। कंपटीशन हुआ जिसमें कई शहरों के अलग अलग जजेस आए। सभी पार्टिसिपेट्स ने अपने अपने खास डिशेस बनाए। कई राउंड्स हुए, उसके बाद वक्त आया रिजल्ट का। रोहन की सांसें थमी हुई थी क्योंकि उसके पास ये आखिरी मौका था पापा और बुआ जी को साबित करने का, क्योंकि उसको जॉब छोड़कर यहाँ कंपटीशन में आने का लास्ट मौका मिला था। वो बस यही प्रार्थना कर रहा था कि आज ही उसकी जिंदगी का फैसला हो जाएगा। और हुआ भी यही, जब माइक पर विनर का नाम अनाउंस हुआ तो एक पल को मानो रोहन की सांसें थम गईं। वो नाम किसी और का नहीं, रोहन का ही था। उसे एक पल अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन खुशी से वो झूम उठा।

विनर बनने के बाद उसे लगने लगा कि जैसे सारी दुनिया जगमगा उठी हो, और हो भी क्यों ना, उसका सपना जो पूरा हो गया था। दो दिन बाद जब रोहन अपनी जीत का इनाम लेकर घर वापस आया तो रश्मि और माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिताजी भी बेटे की कामयाबी और नेशनल लेवल पर उसका नाम होने पर मन ही मन बहुत खुश थे। घर आते ही रोहन माँ के गले लगा और उन्होंने उसकी कामयाबी के लिए उसे बहुत सारी दुआएं दी। उसके बाद रोहन बुआ जी के पास ट्रॉफी लेकर पहुंचा तो वो भी उसे बेमन से आशीर्वाद देने लगी। रोहन ने कहा, इंसान के लिए उसकी लगन

और उसकी खुशी का महत्व होता है। लड़का हो या लड़की, किसी भी क्षेत्र में फर्क नहीं देखना चाहिए कि कौन सा काम किसके लिए है, क्योंकि जिस काम में इंसान की सच्ची लगन हो, उसे पूरा करने की चाहत हो, तो कामयाबी मिल ही जाती है।

कामयाबी मिल ही जाती है। अभी आप सुन रहे थे ये गीतों भरी कहानी, प्रस्तुति अरुण कुमार शर्मा और शारका शेख की थी। इसी के साथ युववाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें

0: सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश गान। संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रज नवकथा चतुर नारी को बलमा। कहानीकार होंगे उमेश चंद्र शर्मा। संध्या 6:30 पर समय होगा कार्यक्रम संध्या वंदन का। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम सुहानी। संध्या 6:50 पर किसान श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें चर्चा के विषय होंगे धान की फसल में रोग एवं कीट नियंत्रण, दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक आहार। वार्ता इसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित की जाएगी। बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनका निदान, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार। रात्रि 8 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। रात्रि 8:20 पर देश गान प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9:15 पर श्रोता सुनेंगे अपने पत्र एवं व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम नवरंग। रात्रि 10 बजे सुनिएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में कुछ गीत और भजन। गायक कलाकार होंगे तरुण कृष्णदास और वंदना तैलंग।

रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज पंडित जसराज का ख्याल गायन प्रसारित किया जाएगा। राग होगा मारवा, तबले पर संगति केदार पंडित की होगी। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में।

हम सुनने वालों को बता दें, आज रात्रि 9:15 पर पत्रों एवं व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम रात्रि 9:15 से रात्रि 10 बजे के मध्य सुना जा सकेगा।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देशगान।

समवेत सरो में भी आप सुन रहे थे प्रेम धवन की ये देशभक्ति परक रचना। इसी रचना के साथ ही देशगान का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्य को। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज नवकथा चतुर्नारी को बलमा। कथाकार हैं उमेश चंद्र शर्मा।
1: चतुर्नारी को बलमा। हरिभजन ने अपनो छोरा छीतरिया ते कही कि बेटा तू भेड़ को बेच के पांच सिर बेझर याई भेड़ पे लाद के ले आई। या बात को सुन के छीतरिया भूमरे ही भेड़ लेके पेंठ माऊ चल दियो। गेल में सोचत जाय रहो के भाई या भेड़े में जब बेच दूंगो तो जितो चली जाएगी, फिर या पे बेझर कैसे लाद के लाऊंगो। छीतरिया को माथो नेको काम नाव कर रहे हो। जेठ मास की घाम चिलचिलाए के पर रही सो एक बमूरिया तर छीतरिया सहतायबे बैठ गयो। तब ये गोरी भूरी छोरी सहतायबे के काजे बई बबूरिया तर आए बैठी। बातें पूछन लगी, एरे छोरा जा भेड़े लेके कहाँ को जाए ओए, या पे तो बड़ी ऊन गजगजाए रही है। छीतरिया बोले, अरे कहाँ बताऊँ, दद्दू ने तो मैं बड़े धर्म संकट में फांस दियो हूँ। छोरी ने कही, ऐसो कहाँ फांस दियो अरे, कहा बताऊं, बा ने कही है कि या भेड़े बेचिया और पैसन की बेझर ले आइयो और याई भेड़ पे लाद के लइयो। ऐसो कैसे है सके, मैं तो सोचत सोचत बाबरो भयो जाय रहे हूं। छोरी हंस के छीतरिया माई देख के बोली, अरे भले मानस ऐसो करे, या की ऊने मुड़वाए के बेच दे या भेड़ पे धर के ले जइयो। छीतरिया छोरी माऊ देखतो को देखतो ही रह गयो और कहने लगो, अरे तू तो अकल की पुतरी निकसी, राम करे हमारो तेरो सौदा पट जाए तो बड़ो मेल बने। चल बजमारी बड़ो मलूक बनो होएगो अपने मन में। और छोरी ने खिलखिलामती भई अपनी गैल पकड़ ली। छीतरिया खोयो खोयो सो पेंठ में गयो, ऊन हाथ ही हाथर में बिक गई। पान सिर बेजर लेके भीड़ पे धर के गाम को आए रहो। बा बमूरिया माऊ देखन लग्यो, मन ही मन सोचन लग्यो, मैंने तो वा सुगड़ को न नाम बूझो न गाम। दुखी सो भीतर ते है रहो, ऊपर ते खुशऊ है रहो कि आज मैंने बड़ी चतुराई को काम करो ए, दद्दू हमारो खुश है जावेगो। गाम में ऊ मोए अकलबंद मानेंगे, ऐसे ही ऐसे फिर मेरे ब्याह के ऊ जिक्र जिक्रामन हैवे लग जामेंगे। घर आएगो दद्दू ने

राम के गोड़िन में जब छीतरिया घुसोई का आओ तबई देख लई भीड़ पे बेझर आए रही है। आम तई दद्दू ने छीतरिया ती बूझी के लाला सांची सांची बताए जी अकल तो कौन ने दई तू में जी अकल नाए बलाय देर तानू तो छीतरिया बाते रोकत रहो। फिर वाने बताई दई के एक गोरी भूरी छोरी मिली वाने मोजी ऊन बेचवे की बुद्धि दई। हरिभजन तो पहले ही जान गयो कि दार में कछु कार होए अब तो बात खूट गई है। मन ही मन सोचन लगो कि बात छोरी ते छीतरिया को ब्याह है जाए तो हमारी उपक्रम पे नोन बरस जाएगो। बहुत सोच विचार में डूब गयो हरिभजन। इतकू छीतरिया उठत बैठत नामत धोमत खामत पीमत वा छोरी को ही सोचत रहे काऊ काम को करवे को मन ही न करे हाथ पाम से फूल गई। सांझ को समय भयो श्रिया कठोटी में चून मारी रही छीतरिया सिल पे चटनी पीस रहे। दद्दू ने कही बेटा वा छोरी ढूंढ निकास बुई जा घर को दिलिद्र पार कर सके। खटूला पे बैठे बैठे हरिभजन ने छीतरिया के मन की सी कह दई। छीतरिया को भीतल्लो हरियाए गयो अब तो सिल पे चटनी और जोरंते पिसन लगी। रोटी पानी ते निर्चू है के तीनों प्राणी अपनी अपनी खाटन पे पर गए। ध्योस भई तो छीतरिया दिशा मैदान गयो गेल में सुल्ला सरपंच को छोरा मिल गयो। वाते छीतरिया ने कही के हमारे घर कह दियो के छीतरिया आन गाम को काम ते गयो है वाको पेड़ो मत देखियो। लंबे लंबे डग भरत भयो छीतरिया बा बमूरिया तर पहुंचो और जितकु वो छोरी गई बाई गेल पे चल दियो। गाम में घुस गए घर घर झांकन लग्यो कहूं दीस जाए तो बड़ो काम बने। सबरो दिन याई धुन में निकस गयो रात की अंधियारी छामन लगी। एक नीम तर भूको प्यासो पर गयो नींद कहा आमती पौ फटन लगी। गांव की बैयर जेहर लेके पानी भरवे को कुआन पे आमन लगी। छीतरिया नीम तर बैठो सोचन लगो के याई समय मिल सके बू पानी को निकसी होगी। ऐसो विचार कर कुआ माई धीरे धीरे चलवे लगो। जोतानी एक वाखर सी में थे कोई दस बारे बैयर और छोरी जेहरन ने धर के निकस के जा रही। छीतरिया बिनमाऊ देख रहे हो उनमें थे एक बैयर ने कही का खो गए रे तेरो कहा देख रहे हो हम माऊ कछु सुनी सुनाई सी बानी लगी चौंक पर्यो फिर देखो अरे ई तो बुई छोरी है। तब तानु बैयरन के झुंड में वो अगाड़ी निकस गई। छीतरिया लपको लपको बाई झुंड के पीछे है लियो कुआ पे पहुंच गयो। फिर बा ने कही के प्यासो है का छीतरिया ने मुंह हाँ में हिलाए दियो। गुओ है का नाय नाय हाँ हाँ प्यासो हूं कुआ पे ठाड़ी सबरी बैयर खिलखिलाए के हंस गई। छोरी ने करसिया कुआ में फांस गई और पानी भर के बामाऊ आए के पानी पे बामन लगी। छीतरिया ने ओख लगाई लई और बैठ गयो आधो पानी पियो आदि आधो ते ज्यादा फैलाए दियो। पानी पी के वो बोलियो अपने दद्दू ते मिलाए दियो कहा करेगो दद्दू ते मिलके मेरो दद्दू तेरे दद्दू ते कछु बतरामन करेगो। तब तानु संग की पानी भरवे बारी घर को चलन लगी। वाते बोली अरी का जाई के संग जावेगी चल घर को। बाने झट चपटा मूड पे धरियो और चल दीनी। छीतरिया उबा के पीछे पीछे वाके घर पहुंचो। अब छीतरिया बूझ गयो कि ई नीम बारो घर याई को है। माई ते भगत गयो लंबे लंबे डग धरत भयो अपने घर आए के रुकियो। अम्मा दद्दू दोनों पोरी में चिलम पीमते भई चिंता में बैठे छीतरिया देख के हरे है गए। ले भाई दद्दू मैं तो पतो लगाए लायो अब तेरो काम है। गांव में घुसते ही गोला कुआ की बगलते गली को नीम बारो पहलोई घर हुए बाकी उसारे पे छप्पर पर्यो भयो। दद्दू बोलियो बाको नाम कहा है लाला अरे नाम तो मैंने अबू ना बूझो बाकी दद्दू को नाम तो बूझो होएगो ना तो मैं तो सुध भूल गयो। तू पूरो सुध भूला रहे हो अब फेर जा और सबन को नाम बूझ के आ मैं कौन ते कहा बूझूंगो। छीके में ते रात की द्वैवासी रोटी खाए के कच्ची कुइया को पानी पी के बाछोरी के गांव माई चल दियो। सामूई ते गांव की बैयर जेहर भर के लाए रही सो छीतरिया के मन ही मन में सोच रहे हो के सगुन तो बड़ो बन्यो है काम बनत दिसत हुए। हुब में पामन ने गैल को पतौ न चलन दियो गांव आए गयो। गांव में घुसते ही पोखरिया पे भैंसन ने पानी पिबाबे को लाई वो छोरी धोबी की पटिया पे बैठी पायन ते पानी में खिलकोटी कर रही। बाकी चांदी की तोड़ियान के रोना पानी की ताल में ताल मिलाए रहे लहंगा पहन रही सो बाकी पीड़ूरिन की गुलाई और गुराई को देख छीतरिया सन्न सोहे गयो।
बलाय देर चुपचाप

थाड़ो रहो। बाकी भैंस पोखर में भीतर लूर रही और वो अकेली पोखरिया की पार पे अपनो सुख ले रही। तबई एक और छोरी खेतन की मेड़ पे भैंस चरामती दीसी। छीतरिया ने सोची, अरे जी कहूं न्यान आ जाए तब तालू में जाते नाम बूझ लूं। छीतरिया है तो बामाऊ देख भी में ही सबरो सुख मिल रहे हो, पर बड़ो मन मार के हिम्मत सी बटोर के बाके मोड़े ते निकसी, मैं न्यो कहूं तिहारो। इतनो ही कह पायो तब तानू वो छोरी उठ के ठाड़ी है गई और बोली, तू यहाँ कहाँ ते आए गए हो? मैं त्यारे दद्दू को नाम बूझ भी आयो हूं। तू कहाँ करेगो नाम बूझ के? अपने दद्दूए भेजूंगो, बु कछु बिनते बात बतरामेंगे। हमारे दद्दू को नाम है कासू और त्यारो नाम, मेरो नाम है सोमोती। अच्छो अब मैं जा रहे हूँ, परमेश्वर ने चाही तो हमारे उदलदर पार है जामेंगे। तब तानू बू छोरी पोखर पे भैंसन ने लेके आई गई। छीतरिया अपने गांव माऊ चल दियो। छीतरिया को दद्दू सोमोती के दद्दू के ढिंग आयो और छीतरिया के संबंध को पुख्ता करेगो। ब्याह के सबरे काम है भी लगे। अच्छो सो दिना पंडित पे निकसवाए के ब्याह है गयो, सोमोती घर आ गई। एक दिना की बात, एक बोहरो आयो और बाने घर अकेले सोमोती को देख पूछी, छीतरिया कहाँ गयो है? सोमोती ने कही, पाताल के पानी आकाश को फेंक भी गयो है। बोहरो बड़ी अचंभे में पड़ गयो, जिका कह रही है पाताल को पानी आकाश में कैसे फेंको जा सके? बोहरो बोलियो, री हम ना समझे न जी, हमारे घर ते नीचे उतर रही है, पाताल को पानी आकाश को कैसे जाएगो? सोमोती है पहले ही पतो के हमारे ससुर पे या के 400 रुपयन को कर्ज हुए, जित तगादो कर भी आयो है, या के बताएवे के 100 रुपया लगेंगे, अब हाल बताऊं? अच्छो तो बताए, चर्स खेच भी गयो है, बर्तते पानी को ऊपर लावेगो, जिब है पातालते आकाश में पानी को लाएगो। बोहरो दातन तर उंगरिया दबाए गयो, जितो बड़ी होशियार है रे, ले 100 रुपया। हरि भजन कहाँ गयो है? बाबा वो तो आकाश के पानी रोक भी गयो है। री तू तो बुझोल बुझाए रही है, ऐसो कैसे है जाएगो? आकाश के पानी कहूं रुकत होंगे? बाबा 100 रुपया दे तो अब हाल बताऊं। अच्छो ले 100 रुपया। सुन ले, हार गई तो 100 रुपया और देने पड़ेंगे, तो हो दे दूंगी। हाँ तो बताए, छप्पर छाए भी गए ओए, जब मेर परेगो तो छप्पर आकाश के पानी को रोकेगो के ना? बोरो बहुत चक्को सो रह गए हो, अरे सांची कह रही है हम हारे भैया और तू जीती। बोरो मनी मन सोचन लगे हो, अभी तो या की ससुर पे 200 रुपया बोरगत के और बाकी हैं, या की सास तो होएगी, या के बूझू अरे तेरी सास को नाय दीस रही, कहूं गई है का? अम्मा जी तो एक के द्वे करवे गई है, अरे जीव को यनक टोंटो काम करवे गई होगी, तोते बूझूंगो तो 100 रुपया फिर मांगेगी। सोमोती बोली, याऊ नाय समझे का? चल 100 और दूंगो, बता याऊ को भेद, चना दरवे गई है, एक चना के द्वे है के ही द्योल बनेगी। तू तो बड़ी अकलबारी है, तो तू का कर रही है? मैं तो एक पकड़ के 100 की खबर ले रही हूं। बोरो बोलियो, अब तो इतरा रही है, मैं द्वैवीर हार गए हूं तो जिम वो बिल्कुल ही सिल बिल्लो जान रही है, अब के या हराए के अपनो मोड़ो उजरो कर लूंगो। बाबा कैसे चुप सो परिगो, बताए नहीं तो 100 दे अब हाल बताऊं। बोरे ने कही, अच्छो अब के 300 की रही, तू हार जाए तो इन 300 ने मुंह गाय दियो। काट ख्यास, मैं चामर रांध रही हूं, जब जी है जामेंगे तब मैं एक चामर देखूंगी और जिते कऊ चामर होंगे बिन सबन को हृदय ही मानूंगी। बोहरो सुन के ठगो सो ठाड़ो रह गयो, फिर मूड़ पकड़ के बैठेगो, ऐसी सुलाखनी नारते तो घर की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़वा रह जाए, चौमासे की घास की हानि बढ़े। इतकू हर भजन हार्यो नीयो घर में घुसो तो बोहरो करम पे हाथ धर के बैठो। बुआ देख के हरिभजन को बुरो हाल भयो जाए रहो, तब तोली छीतरियाउ आए गयो। बड़ो सकुच में आए के कहूं, आज सोमोती के सामई सब धूर में न मिलाए दे। श्रियाऊ खांसती उखरी भई सांस बैठारती सी आई गई, बोहरे देख के झमासो खाई गई। उसारी के द्वार पे ही बैठ गई, बोहरो उठ्यो और हरिभजन माऊ आयो। कछु कहवे को भयो ही हो तो झट हरिभजन बोलियो के एक पखवारे और मान जा बोहरे जी। अरे बोहरे जी कहा मान जाए, तेरे

0: सीतरिया की बहू थी, आज मैं बुरी तरह हार गया हूं। तेरे 400 बरबर है गए और 200 रुपया या बहुए और दे चले हूं। भैया ऐसी चतुर बहू सब काऊ की होए, हर वजन उलन लगो। अरे भैया चतुर नारी को बलमा टोटे में खुश रहे। सीतरिया ने कही, टोटो बिचारो कहा करे जब घर में पावे हंसती भई नाथ।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज नवकथा चतुर नारी को बलमा। कथाकार थे उमेश चंद शर्मा। इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं। स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम हेलो सहेली में इस सोमवार 24 अगस्त में दोपहर 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप नंबर 9412225575 पर संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 24 अगस्त 2026, समय दिन में 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ के युगल स्वरों में अंकुश फिल्म से ये भक्ति रचना। आइए आप सुनते हैं गीता रॉय के स्वर में फिल्म जोगन से ये रचना।

गीता राय के स्वर में अभी आप सुन रहे थे जोगन फिल्म से ये भक्ति रचना। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन

चंद्राणी मुखर्जी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे गोपाल कृष्ण फिल्म से रविंद्र जैन की ये भक्ति रचना इन्हीं के संगीत निर्देशन में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति फिल्म

रविंद्र जैन और साथियों के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे गोप ब्रजभूमि फिल्म से। ये भक्ति रचना रचना और संगीत रविंद्र जैन के थे। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को राम राम। भैया देखो, यास में हमारी खेती में धान की फसल ठाड़ी है और धान की फसल के काज भैया बरसाऊ या समय समय पर होती रही है। या समय तो खेती में भैया फूट है कि और धान में जो है बाली निकलने की तैयारी है रही है। धान की जो बाली है वो कूथ में आवे को जो है प्रक्रिया चल रही है। तो बात एक ध्यान रखे भाई है कि भाई या में कीट प्रबंधन हम कैसे करें। देखो भैया, ज़्यादातर तो जी फुदका भाई, तुम्हारी पत्ता लपेट भाई, और जो जड़न में लग जाए का सूढ़ी, वो ऐसे कछु रोग हैं जो हमारी धान की फसलें नुकसान करें। तो भैया आप जानो, विशेषज्ञ बतामते रहें समय समय पे, तरह तरह की जो दवाएं आ रही हैं जो कीट नियंत्रण करें। और भैया कछु ऐसी हैं बुरकवी की हुआ में जो खाद में मिलाए के या धूल में मिलाए के जैसे कैसी बुरकी जाए, खेत में अगर पवेर दी जाए तो जो को कीड़ा हमारी फसल को नुकसान कर रो है वो जहाँ की तहाँ रुक जाएगो और हमारी फसल नुकसान है बेती या वहाँ में कोई हान है बेती बच जाएगी। अब हमारे भैया क्या करें कि भाई लें और मजदूरन पे डाल दें कि लो तुम हमारे खेत में छिड़काव कर दो। पर भैया जी ध्यान रखो, जरूरी है कि कोने कोने में और हरेक जगह दवाई पहुँचनी चाहिए। नहीं तो ऐसो है जाए कि जा जगह पे हमारा छिड़काव नहीं हुए गो, वही जगह पे फसल को धान को ये जो कीटाणु हैं हमारे कीट हैं जो हानिकारक हैं वो जरूर हानि पहुंचा देंगे। तो ऐसे करके हमें ये प्रबंधन करना है कि फसल में पूरी में एक संग, हम तो जो कह रहे हैं कि पूरे चक में सभी भैया एक संग मिलकर जब छिड़काव करेंगे जब जाके फसल में ते जो रोग है वो मिटेगा। क्योंकि ऐसा हो एक खेत में तो हमने आज कर दो और अगले खेत में जो है वो जितने भी कीटाणु हैं जितने भी कीट हैं वो या फसल में ते निकल के दूसरे में पहुंच जाएंगे। तो हमारे तो बच गो पर दूसरे को नुकसान है वो। तो करना जी चाहिए माई वहाँ जगह पे मान लो 100 बीघा को चको है तो 100 बीघाओं में एक संग। अब तो आजकल देखो नई नई तकनीकी आएगी, ड्रोन ते आजकल छिड़काव है रहे हैं। तो ड्रोन को बड़ो अच्छो उपाय बतायो के भाई वो तो 100-100 200-200 बीघा में एक संग ही सबरे ऊपर छिड़काव।

कर दिए, ऐसे लगे कोई बरसात है रही है का। तो ऐसे करके सवरी फसल एक संग जो है, जो कीटनाशक जो हमारी दवा है वाते छिड़काव है कि सुरक्षित है जाए। तो ऐसे करके भैया हम अपनी फसल को कीटनाशक ते छिड़काव करके कीटन ते बचा सकें। तो जितो कुछ चर्चा हमने करी भैया फसल में जो रोग और कीट प्रबंधन की, अब देखो मनोरंजन करवा में आपको सावन को महीना अब चल ही रहो है, थोड़ो सो रहेगा भैया। पर अब देखो आपको ऐसो ही लोकगीत तो आपको सुनवा में मंजू कुंतल के सुर में, सावन को महीना सबरो बीत्यो जाय रहो जी।

सावन को महीना सबरो बीतो जाय रहो जी। मंजू कुंतल के सुर में भैया आओ अवै आप जा सावन के गीत को आनंद ले रहे थे। देखो भैया, यास में बरसात को मौसम तो चल ही रहे हो है। और बरसात में हमारे पशुओं को बड़ो हमें रख रखाव और देखभाल करनी है भैया, चूंकि ऐसा हो कि जी मूंग पशु है भैया, मोहते तो कजू कहना है पाम हम निकट जाए खेत न पे और पोयो हमारो के तो धूप में ही ठाड़ो के कीच में ही ठाड़ो है। और वह प्यास लग रही है, एक जन भूख लग रही है और भैया के जन वो परेशान है, एक जन बीमार है, एक जन कलील इंदी परेशान है, तो हमें उनको जरूर ध्यान रखना है। तो बरसात के मौसम में जो पशुओं के रोग हैं उनको कहाँ निदान करो जाए और भैया कैसे

0: उनको उपचार करा जाए, यही विषय पर आज आपको एक वार्ता सुनवा में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। सुनो भैया।
1: किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पशुओं में बरसात से होने वाले जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनके बारे में। तो जैसे जैसे बरसात शुरुआत होती है, तो बरसात जब आती है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हरियाली आती है, वैसे वैसे कई प्रकार के रोग भी लाती है बरसात। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी रोग पशुओं में शुरू हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि जो मुख्य रोग हैं पशुओं में उनके बारे में, और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो जैसे जब बरसात आती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो तालाब के किनारे या नदी के किनारे, तो चारा जो होता है वहाँ पर छोटे छोटे घोंघे होते हैं। वो घोंघे क्या होते हैं, परजीवियों के लिए मध्यवर्ती पोषक या इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। तो अब जब बरसात में हर जगह से पानी भर जाता है, तो फिर किसान भाई की मजबूरी हो जाती है कि चारा कहीं से काट के लाके खिलाए पशुओं को। तो उन चारे में छोटे छोटे घोंघे भी आ जाते हैं, जिनसे वो उन घोंघों के द्वारा पशुओं के पेट में जा कर के विभिन्न प्रकार के परजीवी उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जहाँ पशु बांधते हैं वहाँ पर क्या है, पानी भर जाता है, उनके बैठने का स्थान सूखा नहीं रह पाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बाहर के चारा आने से परजीवी रोग उत्पन्न होते हैं, और जहाँ पर पशु बांधते या बैठते हैं वहाँ गीला होने की वजह से कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, वायरस उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे पशुओं में बैक्टीरियल और वायरल रोग भी हो जाते हैं। तो उन वायरल और बैक्टीरियल रोग में जैसे कि गला घोंटू हुआ, या खुरपका मुँहपका हुआ, या लंगड़ा बुखार कहते हैं, या एंथ्रेक्स जैसी भयंकर बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो हम एक एक करके इन बीमारियों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे गला घोंटू है, गला घोंटू रोग क्या होता है कि पशुओं के गर्दन में एकदम से सूजन आ जाएगी, पशु सांस नहीं ले पाएगा, और उसमें घर घर की आवाज़ आएगी जो काफ़ी दूर से सुनी जा सकती है। तो यह बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग है। तो किसान भाइयों से अनुरोध यह है कि अगर इस तरह से कोई भी समस्या उनके पशुओं में आती है, तो तुरंत ही अनदेखी ना करते हुए नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनका उचित इलाज करवाएं। उनको ये ना सोचें कि ये स्वेलिंग या सूजन ऐसे ही आ गई होगी, ये एक भयंकर बीमारी का द्योतक है। ऐसे ही दूसरा रोग होता है बैक्टीरिया के द्वारा, थनैला रोग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैस्टाइटिस। तो थनैला रोग जो होता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। होता कैसे है कि जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो जब पशु को किसान भाई हमारे दूध दुह लेते हैं, दूध दुहने के बाद जो उनकी दूध की नली होती है वो तकरीबन 10 मिनट तक खुली रहती है, और नीचे उनके बैठ पशु दूध दुहने के बाद जब उसको थोड़ी सी कमजोरी से महसूस होती है तो फिर वो बैठने की कोशिश करता है और बैठ भी जाता है। जब वो बैठ जाता है तो उस दूध जो नली होती है वो खुली होने के कारण उसमें बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, और जब बैक्टीरिया प्रवेश करने के बाद फिर वो उसको अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिससे शुरुआती लक्षणों में क्या होता है कि दूध में छिछड़े आना, थनों में सूजन आना, दूध कई बार खून भी आने लगता है, तो दूध लाल रंग का दिखाई पड़ता है। इससे किसान भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनको नहीं पता होता है तो उसकी सोचते हैं सूजन आ गई है तो सिकाई कर देते हैं। ऐसा कदापि ना करें। जब भी इस तरह के थनों में कोई सूजन दिखाई पड़े तो उसको ठंडे पानी से धो लें, और ठंडे पानी धोने के बाद हो सके तो बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, लेकिन धुआं या गर्म पानी से कतई सिकाई मत करें। दूध धोने के बाद उसको हम लाल दवा से धो देते हैं, जिससे कि कोई गंदगी लगी ना रहे या दूध लगा ना रह जाए जिसमें कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो पाए। और पशु जब बैठना चाहते तो उस समय पशु को बैठने मत दें, जिससे कि बैक्टीरिया उसके थनों में प्रवेश कर पाए। तो इन सब चीज़ों से अगर हम अपनाएंगे तो हम पशुओं को थनैला रोग से बचा लेंगे। दूसरा एक बीमारी आती है, खुरपका और मुँहपका रोग। तो जो खुरपका मुँहपका रोग होता है, ये पशुओं में

0: मुंह पे छाले आ जाते हैं, पैरों में छाले आ जाते हैं, इतने ज़्यादा छाले आ जाते हैं कि पशुओं के मुंह से हमेशा लार टपकती रहती है, पशु लंगड़ा कर चलने लगता है क्योंकि छाले की वजह से। तो उस केस में क्या करते हैं कि अगर इस तरह के कोई लक्षण दिखाई पड़े तो पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें, और पशु चिकित्सक को उनका उपचार मालूम होता है तो वो तुरंत उसका उचित उपचार करेंगे। दूसरा एक सलाह यह है कि अगर आपका स्वस्थ पशु और इस तरह का कोई संक्रमित पशु आपको दिखाई पड़ता है तो तुरंत संक्रमित पशु को स्वस्थ पशु से अलग करें और उसको ऐसी दिशा में बांधें कि जैसे हवा का प्रभाव संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु की ओर ना हो, क्योंकि इसका वायरस हवा में भी पहुंच जाता है। तो एक दूसरे से संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि पशु को ऐसी जगह पर बांधें कि हवा विपरीत बहे स्वस्थ पशु की तुलना में। दूसरा आता है लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर या ब्लैक लेग भी कहते हैं, कहीं लंगड़ी भी बोल देते हैं। इस तरह से भी बीमारियां होती हैं हमारे पशुओं में। तो जब बरसात आती है तो जो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उनके शरीर में जगह जगह पर वो घाव टाइप के या फिर अंदर ही अंदर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो जहाँ पर इस प्रकार के बैक्टीरिया अगर डेवलप हुए उत्पन्न हुए हैं तो वहाँ पर अगर आप हल्के से हाथ लगा के देखेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर गर्म रहेगी, प्लस एक अलग तरह की आवाज़ आएगी। पशु इस प्रकार से संक्रमित हो जाता है कि इनमें भी वो लंगड़ा कर चलने लगता है, जिससे कि इसको लंगड़ा बुखार भी कहते हैं, और पशु को हाई टेम्परेचर रहता है हमेशा। तो इस तरह के अगर लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो भी अपने पशु नज़दीक के पशु चिकित्सक से सलाह लें और उचित उपचार करवाएं। एक बीमारी आती है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स के भी जो स्पोर होते हैं ये भी बैक्टीरियल बीमारी है। तो अगर जब बीमारी का प्रकोप पशुओं में हो जाता है तो पशु तुरंत ही इसमें दम तोड़ देता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, और क्या होता है कि जो उसके नेचुरल छिद्र हैं जैसे एक नाक हुआ, मुंह हुआ, या जहाँ से पशु मलमूत्र त्याग करता है वहाँ से खून आने लगता है। तो ये जो बैक्टीरियल बीमारियाँ हैं जो बरसात के समय से शुरुआत के समय से ही होना शुरू हो जाती हैं, इनके ये लक्षण हैं। और अगर इन लक्षणों से आपको अगर कोई भी दिखता है तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक से अवश्य सलाह लें, इधर उधर का कोई सलाह ना लें, हमेशा हमें पशु चिकित्सालय पर जाकर के उचित इलाज करवाएं। सबसे बड़ी बीमारियां आती हैं परजीवियों की, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि परजीवी रोग सबसे अधिक होते हैं इसमें, क्योंकि बरसात में परजीवियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी चीज़ आप उसको पशुओं को खिलाएंगे तो हम लोग उनको बचा ही नहीं सकते हैं। तो उपचार सिर्फ यही है कि पशु चिकित्सक के पास जाएं और उनकी गोबर की जांच करवाएं अपने पशु के, क्योंकि जो परजीवी अगर शरीर में पहुंच गया है तो वो अंडे जरूर देगा, तो वो अंडे गोबर में आने लगते हैं, तो जिससे पता चल जाता है कि इस पशु में इस प्रकार का परजीवी का प्रकोप हो चुका है। तो अपने पशु चिकित्सक के पास जाएं गोबर लेकर के, और वो गोबर की जांच करेंगे और जांच करके बता देंगे कि इसको ये प्रकार का परजीवी आपका संक्रमण हो चुका है तो ये वाली दवा आपको खिलानी है। ऐसे ही आप किसी दुकान से कि परजीवियों की दवा दे दो, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमने गला घोंटू, थनैला, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ा बुखार, एंथ्रैक्स और परजीवियों के बारे में चर्चा की। तो आप इन सब चीज़ों से और हाँ, इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक और है कि वैक्सीन आपको अपने पशु चिकित्सक से मिल करके लगवानी चाहिए। जैसे कि साल में 2 बार वैक्सीन लगती है, गला घोंटू की लगती है, खुरपका मुंहपका की लगती है। तो उनको पता रखिएगा कि वैक्सीन कब लग रही है और अपने पशु को वहाँ पर ले जा करके वैक्सीन जरूर लगवाएं। यह वैक्सीन बिल्कुल निशुल्क लगती है सरकार की तरफ से। तो आप अगर वैक्सीन लगवा करके पशुओं को सुरक्षित रखेंगे तो हम समझते हैं आपको किसी भी प्रकार की पशुओं के संबंधित बीमारियां नहीं होंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।
1: तो किसान भैया, अभी आपने जानकारी ली कि बरसात के मौसम में पशु में होने वाले रोग और उनके निदान, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। देखो भैया, अब आपको थोड़ा मौसम की जानकारी दे दें तो

तो कल को मौसम जो ऐसे रहेगा, बरसात 1 मिलीमीटर, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 82 और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 58 रहने की संभावना है। हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चालते और या की दिशा 229 डिग्री, और या की चेतावनी दी जाए भैया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों में मध्यम ते घने बादल छाए रहने की संभावना और 23 अगस्त तक हल्की बारिश और तेज हवा गरज चमक के संग बिजली गिरने की संभावना है। और भैया किसानों ने जे सलाह दी जाए कि चावल की खेती में यदि खैरा रोग दिखाई दे रहा हो तो या के नियंत्रण के ताई 800 लीटर पानी में 20 या 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलो भुजो व चूना मिला के छिड़काव करें। अगर जड़ में सूनी दिखाई दे रही हो तो भैया हुआ कि काज कार्टोप हाइड्रोक्लोराइड 4% दानेदार रसायन 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 सेंटीमीटर स्थिर पानी हैवे पे बाको बुरकाव कर दे। अगर धान की फसल में फुदका कीट दिखाई दे रहा हो तो वाकी रोकथाम के काजे इमीडा क्लोरोप्रिड 17.8% SL 125 मिलीलीटर या क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के बाको छिड़काव कर दे। बात करें अगर हम अपनी पशुओं की जो भैंस पाल रखी भैया हमने, तो किसानों ने सलाह दी जाए कि बरसात के मौसम में पशुओं में किलनी जूं इनको संक्रमण ज़्यादा फैल तो दिखाई दे रहे हो तो या के बचाव के काजे भैया बाड़े में चूने को छिड़काव करें जाते किलनी जीव के अंडे और बाकी लार्वा नष्ट हो जाएं। और पशु ने भैया ज़्यादातर बरसात में या धूप में खुले में न बांधें और रात के समय आसमान साफ हैवे पे ही खुले में बांधें। छायादार वृक्ष के नीचे या भैया छप्पर के नीचे पशु ने बांधें। और अगर पशुओं के पेट में कीड़ा दिखाई देवी के लक्षण आ रहे हों तो वाकी रोग के कार्य कृमिनाशक दवा सर्वोत्तम उपाय, गलघोंटू लंगड़िया बुखार के टीकाकरण जरूर करवाएं। तो जी भैया हमने मौसम की और कछु कृषि समाचार आपको बताए। अब देखो समय रहते आपको एक लोकगीत तो और सुनवावे, तो सुनो भैया मदन मदन मोहन ब्रजवासी के सुर में गायब हो जे लोकगीत झूला झूलने जमुना किनरिया।

झूला झूले जमुना किनरिया, राधा संग में समरिया। मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में गाए भई, या लोकगीत के संगई। भैया अब हमें आज्ञा दियो, या ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम को यही संपन्न करवेगी। सबई भैया बहन को राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा। आपसे कुछ पलों में कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में हुए शामिल जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम। टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के पास इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस की एक असाधारण विरासत है और उत्तर प्रदेश के पास अपने युवाओं की एक ऊर्जावान पीढ़ी है जो सीखने, सृजन करने और नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के युवा ऐसी स्किल और वर्क कल्चर सीखें जिसकी डिमांड टोक्यो समेत दुनिया भर में हो।
1: हमारी पार्टनरशिप की सफलता केवल बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से नहीं नापी जाएगी, इसकी अगली सफलता मिलियंस ऑफ जॉब्स होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में दिखाई देगी। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। उन्होंने जापान की कंपनियों को यहां निवेश करने और बिजनेस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। श्री योगी ने बताया कि इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानाशी डेस्क स्थापित की जाएगी जो यामानाशी सरकार और वहां के उद्योगों और निवेशकों के साथ निरंतर समन्वय करेगी। इससे पहले यूपी जापान हेल्थ केयर एंड केयर इकोनॉमी पार्टनरशिप के सेक्टोरल सेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जापान और भारत की क्षमताओं को जोड़कर हेल्थ केयर और केयर इकोनॉमी में बड़ा मॉडल तैयार किया जा सकता है। वहीं आज यामानाशी प्रीफेक्चरल असेंबली ऑफ जापान और उत्तर प्रदेश विधानसभा के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के लिए एमओयू हुआ। एमओयू के तहत दोनों विधानसभाओं के बीच म्यूचुअल विजिट्स, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और एक्सचेंज एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही दोनों अपनी कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जापान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सेमीकंडक्टर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के शामिल होने की संभावना पर भी चर्चा हुई। जापान की ओर से सेमीकंडक्टर सेक्टर में मौकों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक टीम भेजने की इच्छा जताई गई। श्री योगी ने कहा कि

0: एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इस अहम क्षेत्र में जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और राज्य की औद्योगिक क्षमताओं के बीच सहयोग की काफी संभावना है। साथ ही जापान के अनुरोध पर सितंबर में होने वाले टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में उत्तर प्रदेश के शामिल होने पर भी सहमति बनी। इससे पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम अ डायलॉग विद द फ्यूचर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों, परंपराओं और देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के सिलसिले में इस समय जापान के उद्योग जगत के 200 से अधिक प्रतिनिधियों का दल उत्तर प्रदेश की यात्रा पर है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने आज लखनऊ में सशस्त्र सीमा बल की चतुर्थ वाहिनी मोहनलालगंज में जवान बैरक, अधीनस्थ अधिकारी मेस और आवासीय भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्रीय मुख्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, संयुक्त चिकित्सालय गोरखपुर और 22वीं वाहिनी महाराजगंज के विभिन्न भवनों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए कार्मिक कल्याण और राष्ट्र की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक हैं।
2: हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सभी केंद्र अर्ध सैनिक बलों के आधुनिकीकरण और नई तकनीकी शिक्षण के साथ साथ सैनिकों के परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सैनिकों के परिवार के उचित स्वास्थ्य, आधुनिक आवास होमेस और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मॉडल स्कूल तथा खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया है कि मंदिर परिसर में तय किए गए करीब 70 निर्माण कार्यों में से लगभग 60 काम पूरे हो चुके हैं और उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में सावन में अब तक 53,69,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि हर सोमवार औसतन 5 से 5.5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने अनुमान जताया कि सावन समाप्त होने तक ये संख्या करीब 80 लाख तक पहुँच सकती है।
3: 5.5 लाख का एवरेज हमारे पास सोमवार का है। उस 19 दिनों में 53,69,634 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी जो बचे हुए हमारे 9 दिन और हैं उनको मिलाकर आंकड़ा लगभग 80 लाख के आसपास पहुंचेगा, ऐसा हमारा आकलन है। और यही आकलन शुरू में व्यक्त भी किया गया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो मानक संचालन प्रक्रिया है, SOP जो हमारा बनाया गया है, उसी के अंतर्गत एंड टू एंड बैरिकेडिंग, खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्प काउंटर इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं।
0: राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में हो रही तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। वहीं बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्ती पार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी भी उफान पर है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जिन रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है वहां राहत और बचाव कार्य में PAC की मदद ली जा रही है। उन्होंने आम जन से

0: सतर्कता बरतने की अपील की है।
1: विभिन्न जगह हमारी सभी तहसील प्रशासन, मेडिकल टीम, सिंचाई टीम सभी एक्टिव हैं और सभी को ये एहतियातन बार बार बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा नदियों नालों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें।
0: मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पश्चिमी जनपदों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में हुए शामिल, जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम, टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

कार्यक्रम शाम सुहानी में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। सांझ ढली आंगन महका, तारों ने ली अंगड़ाई, मन की बात कहे मन से, ऐसी शाम है आई। यादों की गलियों से होकर गीतों की सौगात, आपके संदेशों के संग संग होगी दिल से बात। शाम सुहानी प्रोग्राम में कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसे संदेश जिन्हें श्रोताओं ने अपने प्रेम भरे संदेशों में भेजा है। श्रोताओं, ऐसी शाम है जहां गीत सिर्फ बजते नहीं बल्कि यादों को जगाते हैं, जहां हर धुन किसी अपने की याद दिलाती है, हर संदेश दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता है। तो आइए आज के सुहानी शाम को और भी रंगीन बनाते हैं आपके भेजे हुए व्हाट्सएप संदेशों, फरमाइशों और शुभकामनाओं के साथ। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं शाम सुहानी प्रोग्राम की ये पेशकश। पहली पेशकश आप तक पहुंचा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, इनके साथ ही तनुजा की आवाज बाहरे फिर भी आएंगी फिल्म।

कालिया, देश कुमार और प्रोफेसर वसुधा वज्र से। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और शिवन्या। कल्याण मुंबई से हिवरल किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और आरती सुरलकर। महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद राग्नी, रिया रेणु, दिव्यांशी, आराधना और रोनिका यादव। खरगोन मध्य प्रदेश से हमें सुन रहे हैं उस्मान खत्री, रिजवान अब्दुल गफ्फार खत्री, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर नाजिया इब्राहिम, सद्दाम, सहारनपुर के श्रोता। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से ख्वाहिशमंद श्रोतागण हैं राष्ट्रपाल गजभीर, राधिका व अनुष्का और इनके साथ हैं तन्मय गजभीर। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सबकाल, आशा सोनिया और विशाल सबकाल, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी, तन्नु तमन्ना भाटिया। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा प्रथमेश, निवृत्ति शेरसागर और संजय चौहान। और फिरोजपुर पंजाब से जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरनूर, गुरलाल अविराज और शुभदीप बजाज।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन, और इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम की अगली पेशकश आपके रेडियो सेट पर।

मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे हमरही फिल्म का गीत। जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और रानू। लखनऊ मध्य प्रदेश से लाडला चौबे, लाडली चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। हिसार हरियाणा से राजकुमार डोटी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डोटी। मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शमिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी और मेरा जहां गुलाम साबिर रहे। झालावाड़ राजस्थान से जुड़े हैं राजेश कुमार मेहरा, नंद किशोर, विनोद अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर राहुल, चंदू देवराज, लक्ष्य। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता, सूरज और पी आर जैन। वैशाली कटनकर, रमेश कटनकर, धनंजय कटनकर, गांधी बाग अकोला से। अमरावती की श्रोता कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। खोपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पुपलघट माया, शिवांश, चंद्रकला और देवीदास। बल्हार शाह से सूरज लोंढे, प्राची और एकलव्य लोंढे। श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता और कीर्ति, भूमिका अरोड़ा इनके साथ। फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा। आरती कुमारी, आराध्या कुमारी, विजय सुरलकर महाराष्ट्र से। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म वासना से लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी की रचना, संगीत चित्रगुप्त का।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में वासना फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत निर्देशन था। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा व विमला अनेजा का संदेश में मिला है। बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करण वीर, करण दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू एक्कम और अभिजूत। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। कुर्मा जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से दिलदार, मेरी ज्योति जाह्नवी और दीक्षांत मेरी। शेगांव बुढ़ला महाराष्ट्र से संतोष काली, तेजस एस काली और लोकेश एस काली। करताल रंगारेड्डी तेलंगाना से कानगोपाल गोपाल माहेश्वरी, प्रवलका विष्णुवर्धन और विघ्नेश। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजत और मयंक भाटिया। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव ईशान और कार्तिक सैनी। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और इनके परिवारिजन।

पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू। चरोदा छत्तीसगढ़ से नौशाद अहमद सिद्दीकी और इनके परिवारीजन। बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हागे, कमल और दिव्या हागे। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम अफजल, निपी साहनी और सुनीता साहनी इनके साथ हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का संदेश। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अर्जन और अबान। लोहारीडी से यशवंत साहू, रमेश, हर्ष और अंश। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और मेघा राशि।

शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष चैतन्य मेघा, राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशव रिधान खुराना। जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजने, पीएस नुहनकर और रामलाल चंद्रवंशी। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से वसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी सौ, अजय कुमार और इनके ढेर सारे परिजन। गोपी की नगरिया मथुरा से मिठन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकेता। नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला और डुग्गू। नवधरा के श्रोता हैं मथुरा से कोमल मास्टर, यशोदा, लाखन, सूरज, रोहित, चंचल और संजना। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर राजस्थान के श्रोता हैं अजीत, अमित, शिवांश और शिवांगी, चुन्ना और इनके परिजन। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इनके साथ साथियों को आप सुनेंगे। फिल्म का नाम है आशा, आनंद बख्श की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे आशुभ फिल्म का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कथा। और इसी के साथ शाम सानी प्रोग्राम से मुझे यानी अरविंद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशें फिल्में गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए पेश फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस समय आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे हेमलता की आवाज में दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इस गीत को लिखा था रविंद्र जैन ने और संगीत भी इन्हीं का था। फिल्म संगीत की अगली पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म अंगो।

अभी आप सुन रहे थे आशु भोसले की आवाज़ में अंगूर फिल्म का गीत, और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है ज्वारभाटा।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। फिल्म थी ज्वारभाटा। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं। स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम हेलो सहेली में इस सोमवार 24 अगस्त 2026 में दोपहर 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565253013 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप नंबर 9412225575 पर संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है दांतों की सामान्य बीमारियां एवं उचित देखभाल। श्रोताओं, यदि आप दांतों से संबंधित समस्या जैसे कैविटी यानी दांतों में सड़न, मसूड़ों की बीमारी, जिंजिवाइटिस या पायरिया, दांतों का संक्रमण एब्सेस, दांतों की संवेदनशीलता, झंझनाहट, सांसों की बदबू, दांतों का टेढ़ा हो जाना, दंत प्रत्यारोपण आदि के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर विनीता गुप्ता, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 24 अगस्त 2026, समय होगा दोपहर के 1:15। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। समय रात्रि के 8:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम देशगान। सबसे पहले रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की समवेत स्वरों में।

समवेत स्वरों में अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये देशभक्ति परक रचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम देशगान। कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति रचना है डॉक्टर मैथुली शरण गुप्त की, स्वर है शांति माथुर का।

अभी आप सुन रहे थे शांति माथुर के स्वर में डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त की ये देशभक्ति परक रचना। इसी रचना के साथ ही देशगान का यह कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। श्रोताओ, आज हम आपको ले चलेंगे वर्ष 1959 की लोकप्रिय फिल्म काली टोपी लाल रुमाल की दुनिया में। इस फिल्म का निर्देशन तारा हरिश्चंद्र ने किया था। फिल्म के प्रमुख कलाकार हैं चंद्रशेखर और शकीला। संगीत दिया है चित्रगुप्त ने और गीतों को शब्दों से सजाया है मजरूह सुल्तानपुरी ने। श्रोताओ, ये फिल्म रोमांच, रहस्य, प्रेम और सामाजिक संदेश का सुंदर मेल है। कहानी एक ऐसे युवा की है श्रोताओ, जो अन्याय, छल कपट और अपराध के विरुद्ध संघर्ष करता है। परिस्थितियां उसे अनेक कठिन मोड़ों से गुजारती हैं, लेकिन उसका साहस और सच्चाई अंततः उसे सफलता तक पहुंचाते हैं। इस संघर्ष में नायिका उसका विश्वास बनकर साथ देती है और दोनों का प्रेम कहानी को भावनात्मक ऊंचाई प्रदान करता है। इन्हीं घटनाओं के बीच फिल्म में कुछ ऐसे गीत आते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने के साथ साथ दर्शकों के मन पर भी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कहानी के आरंभिक भाग में समाज की विषमता और जीवन की कठोर सच्चाइयों का चित्रण मिलता है। मेहनत करने वाले इंसान के जीवन में रोटी का क्या महत्व है, ये भाव अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उभरता है। इसी प्रसंग में प्रस्तुत है जीवन दर्शन से भरपूर कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोतो, अब कहानी और अधिक रोमांचक हो जाती है। नायक पूरी तरह अपराधियों के षड्यंत्र को समझ चुका है और दूसरी ओर नायिका भी सच्चाई का साथ देने के लिए निश्चय करती है। दोनों मिलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। पीछा, संघर्ष और रोमांच से भरे अनेक दृश्य कहानी को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। तनाव और संघर्ष के बीच प्रेम अपनी मधुर उपस्थिति बनाए रखता है। इसी भावभूमि पर फिल्म का ये अगला लोकप्रिय गीत सुनाई देता है, जिसमें नायक अपने चंचल और स्नेहपूर्ण अंदाज में नायिका को संबोधित करता है। सुनिए काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का मधुर और लोकप्रिय गीत।

श्रोताओं, आशा भोसले और मोहम्मद रफी के गाए कार्यक्रम का अगला गीत जो आप तक पहुंचाएंगे अभी कुछ ही पलों में, इस गीत के साथ अपनी मंजिल पर ये फिल्म की कहानी पहुंचती है। सच्चाई की जीत होती है, अपराधियों को उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलता है और नायक नायिका का प्रेम, विश्वास और सत्य की नींव पर एक सुखद परिणति प्राप्त होता है। श्रोताओं, ये थी वर्ष 1959 की फिल्म काले टोपी लाल रुमाल, जिसकी कहानी में रोमांच, प्रेम, संघर्ष और सामाजिक संदेश का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। साथ ही इसके मधुर गीत आज भी पुराने फिल्में गीत संगीत प्रेमियों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं। इसी के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब मुझे अरविंद को दीजिए इजाजत, आपके लिए छोड़ जाते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे काली टोपी लाल रुमाल फिल्म के कुछ गीत और उसकी संक्षिप्त कहानी। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैंड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैंड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली

0: में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
4: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर

0: बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
1: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की

0: लिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: Duniya ne bada bhayankar ek roop dekha hai in dino. Resources ka weaponization ho raha. अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
3: साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर

नवरंग कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आप हर शुक्रवार को इस समय सुनते हैं अपने पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम नवरंग। अगले कार्यक्रम के लिए आप हमें फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नवरंग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र वृंदावन मार्ग मथुरा उत्तर प्रदेश, पिन कोड है 281003। जो श्रोता साथी हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना चाहते हैं उनके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225575। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला लता मंगेशकर की आवाज में पाकीजा फिल्म के इस गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में पाकीज़ा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे मजरूह, संगीत गुलाम मोहम्मद का था। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार इस गीत को सुनना चाहा था। प्रकाश नगर मथुरा से खड़ग सिंह छोंकर एडवोकेट कन्हैयालाल वर्मा। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता लिपि और दीपाली गोप। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी सौरभ, साइना और निवान शर्मा। मुंगीसापुर के श्रोता हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कबरुंडेशा, शिविश्ता, मोहम्मद नसीब, पलव लुबना और यश मंसूरी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। राहट कंप अमरावती महाराष्ट्र के हमारे ख्वाहिशमंद श्रोता हैं रुचिका रामेकर, दिलीप, अक्षय रुद्रा और हर्षा रामेकर। श्रीगंगानगर राजस्थान से जुड़े हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना। मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिन का संदेश में प्राप्त हुआ है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा। चोरी लाइन मुंगेली से छत्तीसगढ़ के श्रोता मोहम्मद इजहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। पैंठड़ से सुरेश जाधव, अनीता, सोनल जाधव का संदेश।

Deus. श्रोताओ, कार्यक्रम नवरंग की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अलबेला से। आवाजें चितलकर और साथियों की हैं। आइए सुनते हैं ये मीठा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे चितलकर की आवाज़ों में, चितलकर और साथियों की आवाज़ों में अलबेला फिल्म का गीत। और इस गीत को सुनने के लिए हमें जो संदेश आए हैं उनमें नाम शामिल हैं

खंडौली आगरा से राजू लवानिया, राधे श्याम उपाध्याय, अर्पण कावटिया, खिमेश त्रिपाठी, पंकज पंचम लाल चतुर्वेदी और इनके साथी गण, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता निकेत रोहिणी, ऋषिकेश जीविका, सानिका पुणे पुणे पुणावले से अजय सोनवने, करिश्मा अविका और विशाखा सोनवने, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा का संदेश में मिला है, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगाहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहाना अर्जाना और इनके परिवारिक जन, कल्याण मुंबई से किशोर हिब्राले, सुजाता और प्रतीक हिब्राले का संदेश, श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका जीविका सानू कुमार और

रचना कुमार का संदेश में मिला है। भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी जंगेल, शंकर जायसवाल, गणेश लाल, शुभम, अरुण, राखी, दुर्गेश्वरी और तृप्ति जायसवाल नांदेड़ इताला महाराष्ट्र के श्रोता हैं। चांदनी चौक बिहार से

अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारुणी ठाकुर, सूरज और ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर इनके साथ। एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम और नजमुल होदा गुमला झारखंड से जुड़े हैं। सरगुजा मैन पार्ट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा और रेशमा थापा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला ओम कुमार और आरती सुरलकर का संदेश। राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैं सुन रहे हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र टांकी। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी रजमत, मुरली, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। और अन्य श्रोताओं के मिली जुली फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं। फिल्म का नाम है दिल ने पुकारा। इंदिवर की रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में दिल ने पुकारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन था। इस समय व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़े हैं बरेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी और चंचल ढोमने, मंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी का संदेश, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोना मोराशीष, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से उन्होंने संदेश भेजा है, कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा अभिषेक, सार्थक प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़े हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और मेहराज जहां, फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह, गिलदलजीत, राजदीप गुरलाल, अविराज, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, जाखोद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार दीपक और पूजा खटक का संदेश में प्राप्त हुआ है। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिढ़ा और अलका मिढ़ा, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनी, रोनिका यादव, चंद्रेश कौर और सुनील पाठक, बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप और सेमू, एकम तमिन और अभिजोत का संदेश मिला है। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभिजोत मिशन और जानविका, श्रोताओ इस समय आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र। कार्यक्रम चल रहा है नवरंग, मैं हूं अरविंद कुमार। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म सीआईडी से, आवाज शमशेर बेगम की। मजरों की कलम से निकले इन शब्दों को सुरबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और मुस्कान का संदेश। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जुड़े हैं व्हाट्सएप के जरिए। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल और ईशान, पूजा परिहार,

शमशाद बेगम की आवाज में सीआईडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे मजरो और संगीत ओपी नैयर का था। श्रोता, बहुत सारे संदेश हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मिल रहे हैं और पत्र के माध्यम से हमारे सामने बहुत सारे पत्र रखे हुए हैं जिन्हें हम लगातार आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राम पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया का संदेश में मिला है। कासगंज उत्तर प्रदेश से एम असलम सैफी, जैबुन्निशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और जाहिद सैफी आबाद खान इनके साथ में सुन रहे हैं। हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा

कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन और आसना मोहम्मद कैफ अंसारी, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया जय तुषार, डोली राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। जालना शहर महाराष्ट्र से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, जाधव सुभाष, चंदन एकनाथ और संगीता जाधव। मोहल्ला हलवाईयन शेरकोट बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर। संभरपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांकन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम देवांकन और कृष्ण देवांकन का संदेश। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। और अब बारी है कार्यक्रम के अगले गीत की। हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म अनीता का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए हम सब मिलकर आनंद लेते हैं इस गीत का।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को आप सुन रहे थे अनीता फिल्म के लिए। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत बैरीलाल का था। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, ब्लफ मास्टर फिल्म से, जिसे पसंद किया है शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और किशोरी धान खुराना, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और इनके परिवारीजन, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और रयान बाबू, पंढरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता, यशराज ऋषि और कृष्णा घोड़की, बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर और इनके परिवारीजन, बोरखेड़ा पीतरमल से विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक मोड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सुरेश राजपाल, काजल और मानवी, त्रिलक्ष सोनी और मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, कंजीडुंडवारे से उत्तर आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना और आलिया अंसारी, मुल्तानी ढांडा से पहाड़गंज की श्रोता अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जुड़े हैं, नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन, राजेंद्र शाह, बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, आईपी राय, प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, आकोट से

विनायक भेंटे, मंगला भेंटे, शुभम, विजय, पवन, के संजीव डाबीराव इनके साथ हैं। लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन, नांदेड़ से प्रकाश जैन, हनुमानगढ़ राजस्थान से मंटू शर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का संदेश। तो आइए आप सब मिलकर सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। हमने आपको पहले ही बताया था ब्लफ मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ें, ब्लफ मास्टर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम हाशमी का संदेश में मिला है। और भी बहुत सारे संदेश में लगातार मिल रहे हैं, जिन्हें अब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सभी संदेश इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं। कोशिश करते हैं कुछ और संदेश इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। सिरसा हरियाणा से ये संदेश हमें मिला है राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा का। बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी जयश्री मेहत्रे और अंजुला अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय डब्ल्यू, पी बी कुलथे इनके साथ में सुन रहे हैं। श्रोतो, इतना वक्त अभी बचा है कि हम एक गीत और आप तक पहुंचाते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, गीता रॉय की आवाज में, फिल्म जोगन से।

गीता रॉय की आवाज में जोगन फिल्म के इस गीत के साथ ही नवरंग कार्यक्रम अब यहीं विराम लेता है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अरविंद कुमार को इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम नवरंगो। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वंदना तैलंग और तरुण कृष्णदास के गाए कुछ भजन और गीत। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं वंदना तैलंग के गाए कुछ भजन।

अभी आप सुन रहे थे वंदना तैलंग की आवाज में सूरदास की ये रचना। आइए अब सुनते हैं वंदना तैलंग के स्वर में कबीरदास की रचना।

अभी आप सुन रहे थे कबीर दास की रचना वंदना तैलंग के स्वर में। आइए वंदना तैलंग के स्वर में एक और रचना सुनते हैं। रचनाकार हैं

अभी आप सुन रहे थे वंदना तैलंग के गाए कुछ भजन। आइए आप सुनते हैं तरुण कृष्णदास के स्वर में कुछ भजन। सबसे पहले लीजिए सुनिए नरगी दास की ये रचना।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए आप सुनते हैं तरुण कृष्णदास के स्वर में कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। रचना है सूरदास की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें हमने आपको सुनवाए वंदना तैलंग और तरुण कृष्णदास के गाए कुछ भजन। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित जसराज का ख्याल गायन, राग है मारवा, तबले पर संगति केदार पंडित की है।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का ख्याल गायन राग था मारवा, तबले पर संगति केदार पंडित की थी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27